شجرة يوقد من شجرة

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

0: क्या करें, जब से ये काम शुरू किया है ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो आपका क्या ख्याल, अगर आप ये शुरू ना करते तो इस वक्त में ये और ये नुकसान नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, वैसे भी हो जाते। उन सब लोगों से पूछिए जो दीन की तरफ नहीं चल रहे, क्या उनकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं, कोई कमी नहीं? ये दिन और रात का आना और जाना, ये तो एक फितरत का हिस्सा है, ये तो होगा। अगर दीन के रास्ते में आके आजमाइश आ गई तो दीन के बाहर भी आएंगी, वहां भी परेशानियां आएंगी। लेकिन दीन में होते हुए परेशानी आती है तो इंसान के पास बहुत मजबूत सहारा होता है अल्लाह का, जबकि बाहर वो नहीं होता। ये आपको संभाल लेता है, बाहर आप कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि हम जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटते हैं, फिर अंजाम अच्छा कैसे हो। तो बहरहाल यहां क्या हुआ कि उनकी कौम के सरदारों ने कहा, इलीट ने कहा कि तुम हमारे ही जैसे एक इंसान हो और तुम्हारे फॉलोअर्स कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, कोई बड़े लोग नहीं हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तो मजलिसें ही अलग होती है ना, उसमें छोटों का क्या काम। लिहाजा हम इन गरीबों की मजलिसों में आ बैठे तो हमारी शान के खिलाफ है, ऐसा दीन हम तो कबूल नहीं कर सकते जिसमें हमको अपने स्टेटस से नीचे आना पड़े। वमा नरा लकुम अलैना मिन फदलिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, और हम तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं देखते बल्कि हम तो तुमको झूठा ही समझते हैं। और यही कुछ मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आ रहा था। मा नरा लकुम अलैना मिन फदल, अच्छा वो फजीलत का माना क्या समझते थे कि कोई दुनिया की शान शौकत ठाट बाट हो तो फिर हम समझे कि हाँ ये हमसे अच्छे है। क्योंकि हम जब किसी को अपने से बड़ा समझते हैं तो क्या ढूंढते हैं उसमें, कौन सी अलामतें देखते हैं किसी की बड़ाई की? उसका अखलाक, ईमानदारी, किरदार नहीं, कुछ और देखते हैं। तो जब नापने के पैमाने ही मुख्तलिफ हैं तो फिर फजल कहां से नजर आए। हालांकि पैगंबर अपनी कौम के इंतहाई बाअखलाक, सादिक और अमीन इंसान होते, इन्नक अला खुलुकिन अजीम, लेकिन अखलाकी बुलंदियां उनको नजर ही नहीं आती। वो दौलत और दुनियावी शान और शौकत के पैमानों पे नापते रहते हैं कि पैगंबर के पास घर कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं और खजाने कितने हैं, बाग कितने हैं, जमीनें कितनी हैं, ये चीजें तलाश करते हैं। और जब वो नहीं मिलती तो वो सच्चाई, अमानत, दयानत सब कुछ उनके नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती। और हर दौर में अक्सरियत का यही हाल रहा है कि किसी की बड़ाई को पहचानने के लिए सिर्फ जाहिरी चीजें देखी गई। और नहीं मानना तो ना मानो, उल्टा इल्जाम भी दे दिया, बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319-1557-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: में पेट्रोल 12 रुपया 90 पैसा मांगो करे छो डीजल जी फी लीटर अग में 3 रुपया 72 पैसा वाद पेट्रोल जो नव अग 358 रुपया 77 पैसा डीजल जो नव अग 381 रुपया 77 पैसा थी वो पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल डीजल जहा नवा अग 8 सितंबर ला हुआ पाकिस्तान तेन सूबन सा हमेशा सलामत रहंदो सिंध जो राजधानी कराची हमेशा वांगुर मुल्क के लीड कंदो रहंदो मुल्क सूबे या शहर ते मेरी नजर रखंदड़ के भरपूर जवाब दिनो विंदो वडे वजीर मुराद अली शाह जो फेरे हाल में सलाम कराची फेस्टिवल तकरीब के खिताब संदस चवण हो तो सिंध पाकिस्तान ठाईंदड़ बानी सूबन में शामिल आए मकानी निजाम रुगो सिंध में ही मौजूद आए नवन सूबन जा इंतजामी यूनिट्स जो कयाम कौमी असेंबली आए इन मामले ते किथां भी मज़ामत न थियण घुर्जे ही फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ एक भेरो बीहर नून सूबन जे नवन सूबन जी हिमायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं कंहिं खे भी सूबे जो लफ़्ज़ पसंद न आहे त इंतज़ामी यूनिट सॾियो वञे सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो अफ़गानिन बे कमज़ोर हालतनि बावजूद पंहिंजे मुल्क में 35 सूबा ठाहे छॾिया आहिनि ख़ैराती मैंडेट ते आयल वफ़ाकी वज़ीर अरिड़हीं तरमीम ऐं सूबनि ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि ख़ैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसला न कंदा पहिरीं ई अवाम वटि वञनि मैंडेट वठनि पोइ ॻाल्हियूं कनि क़ौम जा फ़ैसला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जिलीना मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु मोटरवे नाहे ठाहियो सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी बिजली बि सिंध समूरे 10 साल अॻु पंजाब असेंबलीअ मां मंज़ूर कयल ॾखण पंजाब ऐं बावलपुर सूबा ठाहिण बाबति ठहराउ हाणे बेकार बणिजी चुका कंहिं असेंबलीअ जे म्याद अंदरि ठहराउ अमल न थिए त ईंदड़ असेंबली को बि ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनावला जूं निजी टीवीअ सां ॻाल्हियूं संदसि चवण हो त नवनि सूबनि बाबति अवामी रेफरेंडम कंहिं वज़ीर बयान न पर पार्लियामेंट जी मंज़ूरीअ सां आइन मुताबिक़ थींदो मलीर जे इलाइक़े लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन अंदरि फैक्ट्री खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो अची वियो कूलिंग जो अमल जारी बाहि सबब इमारत जो हिकु हिसो किरी पियो फायर ब्रिगेड इख़्तियारनि जो चवणु आहे त कूलिंग जो अमल हिक खां ॿिनि ॾींहनि ताईं जारी रही सघे थो ऐं कोरंगी नंबर हिकु में बस जी टकर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान फोत मछरियल शहरनि जो बस ड्राइवर खे कुटको ज़ख़्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल पुलिस बस खे कब्ज़े में वठी छॾियो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: का शोरूम मेहरा पर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: 3, 4. Nisar Ahmed Memon, Principal, Mazhar School System, Mehrapur. 0301-3865-453.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: हथे गुलमींदी पेरे गुलमींदी।
3: आई अदी, अज तो डाडी खुश पई नजर अची।
2: छो न खुश थिया अदी, जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे, ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचन। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
3: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
4: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
9: 0301-399-2836।
8: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1565-724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में आई पी एस के 11 महीननि में 29 खरब 35 अरब अदा कया। तवानाई वारी वज़ारत गुजरियल माली साल में आई पी एस के अदा कयल रक़म जा तफ़सील पार्लियामेंट में पेश करे छॾिया। 11 खरब 68 अरब पेमेंट जी मद में 15 खरब 58 अरब ॾिना विया। हुकूमत हिक धक में पेट्रोल 12 रुपया 90 पैसा महांगो करे छॾियो। डीजल जी फी लीटर अघ में 3 रुपया 72 पैसा वाध। पेट्रोल जो नओं अघु 358 रुपया 77 पैसा ऐं डीजल जो नओं अघु 381 रुपया 77 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीजल जा पीटीआई जे 27 सेप्टेम्बर ते रिथियल एहतजाज ऐं लांग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते अॼु ॿुधणी थींदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ॿुधणी कंदो। दरख़्वास्त गुज़ार ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर जी ऑफिस खे सियासी इस्तेमाल खां रोकण ऐं 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद जा समूरा रस्ता खुलियल रखण जी इस्ता कई हुई।

0: मलीर जे इलाइक़े लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अंदर फैक्ट्री के लगल बाहि ते ज़ाब्तो अची वियो। कूलिंग जो अमल जारी, बाहि सबब इमारत जो हिकु हिसो किरी पियो। फायर ब्रिगेड इख़्तियारनि जो चवण आहे त कूलिंग जो अमल हिकु खां ॿिनि ॾींहनि ताईं जारी रही सघे थो। फुलजी स्टेशन भरिसां स्कूल जी इमारत ज़बून हाल हुअण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो एतिराज़। ॻोठ कमाल पंवर जे प्राइमरी स्कूल जी इमारत ज़बून हुजण सबब शागिर्द उस में पढ़ण लॻा। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो चवण आहे त स्कूल जी इमारत ज़बून हाल थी हंधा हंधा डरी पई आहे। कमरनि जी छित जा चापुड़ किरण सबब केतिरा ई भेरा शागिर्द ज़ख़्मी थिया आहिनि। मुतबादिल जॻह ॾेई स्कूल जी इमारत डाराए नई इमारत ठाराए ॾिनी वञे। ऐं बाहो खोसो वेझोण जा तल थियार बंदनि गोधोवा वट कायम पुलिस पिकेट ड्राहे छॾी। गोधोवा वट ॾुआरनि जी अच वञ जे अहम लंग सबब पुलिस पिकेट कायम कई वई हुई। अणॼातल हथियार बंदनि राति जे वक़्त पुलिस पिकेट खे ड्राहे पट करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तारीअ लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। खेन गिरफ़्तार कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याणप, ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जीजान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जीजान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जीजान चारो मसालो, जीजान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-0003।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03005109।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो।

0: you are. It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अटॉर्नी जनरल के नोटिस जारी हुए लाइ लार्जर बेंच जोड़ने जो फैसलो अदालती चइनी सूबन के आईजीज एडवोकेट जनरल्स के भी नोटिस जारी कंदे जाती हैसियत में तलब करे वरतो दरख्वास्त बुधनी 10 सितंबर ताईं मुलतवी कई वही। वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में आईपीपीज के 29 खरब 35 अरब अदा कया। तवानाई वारे वजारत गुजरियल माली साल में आईपीपीज के अदा कयल रकम जा तफसील पार्लियामेंट में पेश करे छड़िया। आईपीपीज के एनर्जी पेमेंट जी मद में 11 खरब 68 अरब कैपेसिटी पेमेंट जी मद में 15 खरब 65 अरब डिना वया। कराची में केएमसी के हेड ऑफिस के बाहे मेयर की ऑफिस सड़ी रखती वही। एमजनार रोड से कायम केएमसी की ऑफिस के बाहे किचन में लगी बाहे के नतीजे में मेयर मुर्तजा वाहब की ऑफिस सड़ी रखती वही। फायर ब्रिगेड के बिन गाड़ी बाहे से जब्त आंदो बाहे सबब को जानी नुकसान न थो।

0: सिंध आए तो डिफेंस में भाव भेण के तशद में मुलविस जवाबदारन की हिफाजत जमानत मंजूर कर वरती। अदालत मरियम अली रजा तैमूर की जमानत मंजूर कई। बिन्हीं जवाबदार के वी हजार रुपये जहां मचलका जमा कराने जो हुक्म। जवाबदार के दह डी अंदर लागापियल कोर्ट में पेश थे हिदायत। फुलजी स्टेशन भरसा स्कूल की इमारत जबून हाल। गोठान जो एहतजाज। गोठ कमाल पंवर के प्राइमरी स्कूल की इमारत जबून होजन सबब शागिर्द मैदान से पढ़ लगा। गोठान शागिर्दन जो चवण है तो स्कूल की इमारत डरी पई है। चापुड़ किरण सबब केतरा ही भेरा शागिर्द जख्मी थे। नई इमारत दिनी वे भाऊ खोसो वेझवान जा तल हथियारबंदन गोधो वाह वट कायम पिकेट पुलिस ड्राहे छी। अणजातल हथियारबंदन रात के वक्त पुलिस पिकेट के ड्राहे पट कर छो। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार की सुणप ए गिरफ्तारी लाए कोशिशों जारी हैं। खेन गिरफ्तार किया हों यमनी हुसैन जा सऊदी शहर से हमला। 73 का शहरी जख्मी। हुसैन सऊदी शहर अब्बा कुमीस मुश्तेक नजरान जाजान से हमला कया। हमलों के नतीजे में औरतन समेत 73 का शहरी जख्मी थे। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिब हुसैन के शहर से हमले जो सख्त जवाब दिनो वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल

0: जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर
2: एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
6: सोनी अज तो डाडी खुश थी लगे
7: हां साईं गाल भी एड़ी या है
6: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आ है
7: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आ है
6: छा छा
7: ओहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे तो ढोर सेहतमंद थेंदा गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे तो
6: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुदाई पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो
7: साईं रेडी थे ता बुधाइन बुद्ध अजी वठी अज
6: मां हाणे ही तो वणा त जिया असी भी खीर वधायो ए नोट कमायो
7: हां सही हां
8: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
9: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03-01-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03-1519-15-5-724।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: हुसैन जा सऊदी शहर ते हमला 73 खां वधी के शहरी जख्मी हुसैन सऊदी शहर अबिया कुमिस मस्जिद नौजवान एजाजान ते हमला कया हमलन जे नतीजे में औरतन समेत 73 खां वधी के शहरी जख्मी थिया सऊदी इतादी फोर्स मौजूद हुसैन जे शहरन ते हमले जो सख्त जवाब दिनो विंदो ईरान मुआशी जारियत जारी रहने ते विच ओभर में बहरी जोन कायम करने की धमकी दई छी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रजाई है अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखे तो रेड सी का ईरानी समुद्र अमेरिकी नाकाबंदी ताई बहरी जोन कायम किया वेंदो ईरान जंग खटींदे ही तेल सस्तो थी वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान से जंग खटने बाद तेल जो कीमतू तेजी से घटींदियूं अमेरिका में फी गैलन तेल कराची में केएमसी के हेड ऑफिस के बाय मेयर जी ऑफिस सड़ी रखती वही है मेजना रोड ते कायम एमसी जी ऑफिस के बाय किचन में लगी बाय के नतीजे में मेयर मुर्तजा वहाब जी ऑफिस सड़ी रखती वही फायर ब्रिगेड के बिन गाड़ियों बाय ते जब्तो आंदो बाय सबब को जानी नुकसान न थियो

मटियारी वेझो घर जी छित किरी पई, हिकु ॼणो फोत बस जख़्मी। खाण ओठ में घर जी छित किरण सबबि निंड सुतल असलम शेख फोत थियो, हिकु औरत ऐं ॿारी ज़ख़्मी थी।

फेंस में भाव भेण ते तशद्दुद में मुलविस जवाबदारन जी हिफाजती जमानत मंजूर करे वरती। अदालत मरियम अली रज़ा ए तैमूर जी जमानत मंजूर कई। बिन्ही जवाबदारन के 20,000 रुपयन जा मुचलका जमा करण जो हुकुम। जवाबदारन के 10 दिन अंदर लागा पियल कोर्ट में पेश थियण जी हिदायत।

0: भाव कोसो वेजो अणजातल हथियार बंधन गोधो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी अणजातल हथियार बंधन रात के वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट कर छो पुलिस जो चवण है जवाबदार की सुणप है गिरफ्तारी लाइ कोशिशू जारी आन खे गिरफ्तार किया वेंद वाना में दहशतगर्दन से विढ़े शहीद थियल पाक फौज के जवान अली नवाज के फौजी एजाज से तदफीन गोट पठान खान में शहीद फौजी जवान अली नवाज के जनाजे नमाज में इलाके वासिन वाले अंग में शिरकत कई शहीद के मड़ के फौजी एजाज से सलामी लेई तदफीन कई वही
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109

0: ਕਾਲਾਣੀ ਰੋਡ ਮਹਿਰਾਪੁਰ ਅਸਾਂ ਵਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਪਾਵਾ ਐਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਢਬ 4, 6, 9 ਐਂ 12 ਇੰਚ ਮੇ ਪਲੇਨ ਐਂ ਕਾਲਮ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਆਹਨ ਫੌਜੀ ਬਾਇਰਨ ਲਾਇ ਖਸੂਸੀ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਬਤੇ ਲਾਇ ਫੌਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ 0301-54-31-456 ਐਂ ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-16-23-793
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदले तमाम खूबसूरत मासूम वहीं सुने समात उनके मेरे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुलू दुआओं के समंदर, चाहतों की बारिश और लाजवाल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागता जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद है। और आज जनाब जरा स्टेशन में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में 92 नूरियाबाद भी शामिल किया गया है, तो 92 नूरियाबाद वालों को भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और जितने भी खूबसूरत लोग हमें सुन रहे हैं, जितनी भी खूबसूरत समाधि हमारे साथ मौजूद है, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है इतने ज्यादा खूबसूरत से प्रोडक्ट की वजह से। और ये जो खूबसूरत से प्रोडक्ट आपको प्रोग्राम के अंदर बताए जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स की क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को मजबूर कर देती हैं कि हाँ जी मुझे लगाओ। तो बहुत ज्यादा वाली बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताने के लिए, और बहुत ज्यादा वाली बातें ऐसी हैं जो आप लोगों से सुनने के लिए हैं। तो चलिए रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और जी साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हाजिर खिदमत हो चुके हैं। तो चलिए जी जरा अपने हाल चाल बताते जाइए, सो डियर लिसनर्स अंत के फहालतन कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। और ये हमारा जो 2 घंटों का सफर होने वाला है ना, ये यकीन जाने बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इस सफर में ये होगा कि आप लोगों के साथ हम खूबसूरती की बातें तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे, मस्तियां भी होंगी, एंटरटेनमेंट भी होगी, और उसके अलावा आप लोगों के साथ जिक्र होने वाला है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। सो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स नाम सुनकर ही आप लोगों को एहसास हो चुका होगा कि भाई जान कमाल के प्रोडक्ट लग रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इस प्रोग्राम में मालूम पड़ेगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये जनाब किस बला का नाम है, और ये जो बला है ना ये आपको कितनी खूबसूरती देने वाले हैं, इस चीज का जरा जिक्र होने वाला है। तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यहाँ के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समाल आने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आकर से प्रोग्राम कर लेते हैं, आकर से प्रोग्राम करेंगे जी आज हम एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक।

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम जो कि आप लोगों के समातों के नजर था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली मटियारी 92 नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जरा आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो तो बताएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो क्या तरीकेकार होंगे जो आप फॉलो करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बातें बताने के लिए वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा ऐसे ही दिल कर रहा था कि आप लोगों से ऐसे ही ये वाला सवाल पूछूं। हाँ जी, तो आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि जब आप अपनी स्किन केयर के लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उस ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोग सबसे पहले अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो चेक करते हैं। हाँ जी, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो प्रोडक्ट को ना चेक करके परचेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बिना चेक किए ना प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और उस वजह से ये भी सीन हो जाता है। अच्छा नहीं, ये सारे सीन मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हो जाता है जब आप बिना देखे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा जल्दी से, और आप मुझे ये बताइए कि जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप क्या चेक करते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूमने वाले लिसनर से, तो जनाब अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। और जी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, जल्दी से हमारे पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, हमें बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइएगा, और उसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इतने सारे लोग हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है जनाब कि जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना वो उनकी निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो नाइट क्रीमें होती हैं, ब्यूटी क्रीमें होती हैं, इनके अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी सी नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार गया प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, और ये जनाब आपको ऐसा निखार देने वाले हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो कि आप महंगे महंगे से फेशियल्स कराते हैं ना तब भी आपको नहीं मिलते। तो अगर आप बचना चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भाई बैठकर घंटों अपनी स्किन केयर करते रहें, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें और अपना वक्त भी बचाएं, पैसा भी बचाएं और अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बाकी बहुत ज्यादा बातें हैं जो आपका लगे के साथ ना मैं करती रहूंगी, पूरा प्रोग्राम भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डेडिकेट किया जा रहा है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जनता है मुझे पता होना चाहिए। और जी आप मुझे बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप सबसे पहले क्या देखते हैं। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करेगा ना तो उसकी डायरेक्ट जो नजरें हैं ना वो इस डॉक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हो चुकी है, क्या पता ये भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हो। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आपको भी वो वाली खूबसूरती मिले जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। ओके जी बिल्कुल, यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए,
और जो आज हमारे साथ नए नए लोग कनेक्ट हो चुके हैं और नए नए लोगों को भी वेलकम करते हैं। नए नए लोग भी हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करें। भाई अपनी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पोस्ट मेरी नहीं, ये आप लोगों की पोस्ट है। तो जल्दी से अपनी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाएंगे भाई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और बाकी जो लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करने में कंजूसियां करते हैं ना, ऐसा ना किया करें भाई, ऐसा नहीं किया करें। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, ऐसे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारी पोस्ट जो ना वो पहुंच पाती है। तो पोस्ट को पहुंचाइए जितने भी लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बाकी मेरे पास एक प्यारा सा गाना है, गाना भी साथ साथ सुनते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं।

आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा वेलकम कीजिए। अच्छा, यहाँ पर शेर खान जतोई हमारे साथ हैं, बको देरो बागरानी से कहते हैं अबूजर जतोई और समीना जतोई और शांजी जतोई अदी की आयो हो सदरा माँ ठीक है था बुता किया सफा ठीक ठाक मजे में और शिराज अली मला हमारे साथ है पुरानो। ओके, आपका ये मेरे ख्याल में गांव है। कहते हैं सलाम जी, हमें फायजा का गाना तो सुनाइएगा, डेडिकेट आशिक अली मल्हा रहमान मल्हा के नाम। ओके जी, ओके आई ट्राई। और शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो तालका फेजगंज, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। FM प्रोग्राम की रानी सिद्रा मुस्कान वेलकम, क्या हाल चाल है आपका सिस्टर? जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं बहुत खुशी होती है पता नहीं क्यों, और जब आप प्रोग्राम करती हैं और हंसती हैं और ओहो बोलती हैं क्या ही बात है और हंसते हंसते जलाल को तो प्ले करो, सो नाइस ऑफ यू सिद्रा मुस्कान, हमेशा गुलाब के गुल की तरह खिलती और मुस्कुराती रहो। ओके जी, आप भाइयों की दुआएं हैं जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल तो मैं प्रोग्राम में आपको नंबर्स बता दी रहूंगी जिनके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। क्या बात है। ओके जी, अनवर अली भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तपती हुई धूप में एक ठंडी सी हवा हो हमारी तरफ से आपको दोपहर का सलाम हो। और सूरज की तपश है तेज और चलती है गर्म हवा, खुश रहे आप सदा, दिल से है ये दुआ। चमकती धूप में अपनों का ख्याल आता है, दोपहर का ये सलाम मोहब्बत का पैगाम लाता है। तपती हुई राहों में छांव का एहसास हो आप, दोपहर के इस लम्हे में भी सलामत हो आप क्या मतलब, बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम कहते हमारे प्यारे अनवर भाई जान। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताएं, इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं? जवार मोहम्मद बचल शंपानी भाई हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया भाई लाइक भी कर दिया करें, ये भी आप लोगों का काम होता है। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मटियारी का तवां से न्यू प्रोग्राम ज्वाइन करवा है, प्रोग्राम तवां के पसंद अच्छी पड़े तो थैंक यू मोहब्बतू एंड भाउनजू। यासीन कहते नहीं लखरोड में हूँ नहीं कराची में हूँ, अभी तो मैंने थर वसाया है, थर क्यों वसाया है आपने? और मुझे बताएं आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो गई या फिर अभी तक रहती है? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे ये लगता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवेलेबल होगी तो आपको परचेज करने में आसानी हो सकती है। तो कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं मैं जरा वापस आकर आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जा कर यूं वापस आती हूं, so stay tuned, stay connected and keep listening. Whitish and D Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products. इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 03003385569.
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर. और मेहरापुर की आवाज GAFM 94.

क्या बात है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातिली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ मौजूद है और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आज हम बात कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप ऐसा है कि भाई पहले जान लें उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू किया करें। वैसे भी मैं ये बात हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम रहेंगे और आपको पता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें फायदे मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सबसे बेहतरीन बात बिल्कुल ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है वो जाहिर सी बातें उसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर आराम से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ जरा शेयर कर दें कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए तो आपने जल्दी से डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाब 25970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-90 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर साइन जी तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सगो था अवेलेबल करायो जेका मालूमात वठनी आ वठो अनन के बुधायो बाबा साईं फलानी जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव अगर मिले न थी त असा परचेस किया कंदासी असा इस्तेमाल किया कंदासी बाबा हते अवेलेबल करायो जे असा इस्तेमाल करी सगो आई असान से भी एरिया में मिले आई असा के वठण में आसानी थी वने या वरी तमाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल हुंदी त ताके पाणे गाइड कयो विंदो त बाबा ता फलानी जनरल स्टोर ते हल्या वयो ताके उते आराम डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो वठी करे तमा तलब कंदा अगर तमा मन्या था दुकान ते आई दुकानदार तमा के चवे थो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त कोने का पर हिय क्रीम आ डाढी जो कल हले थी ता वठी वणो हिय उ जे दुकानदार अक्सर मानन के चूनो लगाइंदा है पर तमा इनन सीजन खा बची रहजो तमा के छा कणो है तमा न भा के न ही नंबर दे जो चे जो दुकानदार अदा ही नंबर ते राबतो करे पांजे दुकान ते जल्दी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करा असा सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने का पोए तमा वनी उता आराम सा वठी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ठीक आहे। सो यहां तक गाल थी वे ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा की परचेस कंदा आई की तमा अवेलेबल कराइंदा पर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो इस्तेमाल कंदा हाने इन तरफ अचू था बिल्कुल जी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत सारे जो है ना वो वजूहात में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेरी तो भाई फेवरेट क्रीम है यकीन जाने क्योंकि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है। तो उन लोगों के लिए तो भाई ये ऐसा समझ लें कि वरदान की तरह ही साबित होगी जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं चेहरे पर और वो हमेशा परेशान रहते हैं। वैसे भी अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो मुझसे भी तकरीबन लोग पूछते हैं कि भाई आप बताएं हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, शादियों का सीजन है, हमारे घर में शादियां हो रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए जो लगाएं आप तो आपको खूबसूरती भी मिले और आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है। और जनाब इसका क्या काम होता है, ये इनका काम होता है कि जब आप अपने चेहरे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं, आपकी स्किन की इस तरह हिफाजत करते हैं, आपके चेहरे को निखार देते हैं और ऐसा आपके चेहरे पर निखार आएगा जो कि आप लोगों को महंगे महंगे फेशियल से भी नहीं आता। तो जो खवातीन हमें सुन रही हैं या फिर मर्द हजरात हमें सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप खवातीन ही इस्तेमाल करेंगे, भाईजान इसे आप लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लड़के भी लगाइए, एजड लोग जो है वो भी लगा सकते हैं क्योंकि जब आप
ज्यादा उम्र हो जाती है तो आपके चेहरे पर ज्यादा रिंकल्स भी आ जाते हैं, तो रिंकल्स को खत्म करने के लिए भी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की रूटीन में आपने शामिल करना है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से जो ना वो मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी शख्सियत में जो ना वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो फिर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल आसान से हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है। अगर आप अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप मालूम कराइएगा, परचेज करिएगा। उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करके आ रहे हैं तो सबसे पहले रात के टाइम आप अपना फेस वॉश कीजिए, डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए। उसके बाद सुखाने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम रात के टाइम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, ताकि भाई आपके चेहरे पर जो निखार आए, रिजल्ट्स आए, वो भी मोहब्बत के साथ आए। तो कहते हैं ना, मोहब्बत अगर आप किसी भी चीज में शामिल करते हैं, चाहे खाने में हो या फिर प्रोडक्ट लगाने में हो, तो मोहब्बत का असर बिल्कुल होता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं तो मोहब्बत से लगाइएगा, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिले। और इसी तरीके कार को जब आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन जाने आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और यही बात है कि आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें भाई, कौन से पैसे लगते हैं। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको गाने सुनाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा आप लोगों को बताते जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है। तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उससे सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज चेक करते हैं। ऐसी क्या आपकी आदत है कि आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कौन सी चीज सबसे पहले आप देखते हैं, नोटिस करते हैं, ये आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सिद्रा आप कितना ज्यादा बोलती हैं जो कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ, वाकई में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। चलें फिर बातों को जरा ब्रेक लगाते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना लगाते हैं और गाना साथ साथ सुनते रहेंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, आप ऐसा कीजिए, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की नहीं, या फिर सिर्फ आप सुनने वाले और घुनने वाले लिसनर से मत करें ऐसा। जल्दी हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए और बताइए आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर अभी पेंडिंग है।

0: अच्छा मेरो त लाइ छा छ चे तो पर जको सडी दुनिया है ना बिल्कुल या गाल समझ में जेदी सडी दुनिया में डिठो वने द डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो वने पियो तमा के लगन होतो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में यूज कई वेंदी है पर ई बिल्कुल भी ना है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एतरो जबरदस्त प्रोडक्ट है कि बाहरी मुल्कन में मानो बे इस्तेमाल कन पया आई बाहरी मुल्कन में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई वहां के अगर तमा वेंदा गाड़ी भी घुमण बाहरी मुल्क तो तहां उते भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सबनी के बुधायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन आहे आई तहां वेंदा तो तमा के आराम से मिली वेंदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमा जे गोठन में तमा जे के भी सिटी में रहला या ना था तो तहां पान भी अवेलेबल कराए सको था। ओके जी सो अचूं था तमा जे मैसेज दी तरफ आई मैसेज खोड सारा तमा जा जमा थी चुका है सो हते असा के ज्वाइन कयो है अखलाक बलोच भाई कहते आंसर डेट देखते हैं क्या बात है जी क्या बात है। और मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे थे प्रोग्राम खूबसूरत है आपका सलाम अयूब भट्टी और बाबल खोसो को दीजिएगा। ओके जी और यासीन कहते हैं हम गरीबों को शमन मिराली का गाना लाजमी सुना देना। बिल्कुल जी सुनाएंगे आप तसल्ली रखिए। और फहीम शेख हमारे साथ कहते सलाम याली मदद मुलाल इस्लाम मदद इन वालेकुम अस्सलाम कहते अदा छा लाए खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम सब सब तां बुधायो। और इन खां अलावा हिदायतुल्ला कहते अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान ये सॉन्ग चलाना आपका गाना यकीन करें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो थोड़ा इसका ना वजाहत के साथ लिखिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं फिर आपका गाना लगा देंगे। और रमजान अली हमें सुन रहे कहते हैं सलाम बेना कैसी ये शो में आपको वेलकम कहते हैं सॉन्ग सुनाए प्लीज वाहिद बख्श की आवाज में मां कोशिश क्या थी तमाम भाईरन जो गाना जो फरमाइश ना उन्होंने लगाया था ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि हाँ पहले हम मरे हुए थे फिर आप आई फिर हम जिंदा हो गए ना करें
1: इसका है बच्चा अना पना सजी दुनिया।
0: अच्छा यासीन खान डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है मार्केट में तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं। और फहीम कहते हैं भाऊ कराची क्लिफ्टन से आपका शो सुन रहा हूँ लालकाना की चिंचियाँ आप देखो मैं तो रोज ही देखती हूँ और इतना देख चुकी हूँ कि बड़ी बेजार हो चुकी हूँ। अच्छा उनका अलावा महर इरफान सियाल साहब हमें सुन रहे हैं कहते हैं ग्रेट हॉस्टिंग में मार्जी थैंक यू वेरी मच हमारे सर आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा जी बख्तली सियाल भाई हमारे साथ हैं आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और शहबाज हमें सुन रहे हैं हाय जी हेलो। और जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दें लाइक करने में कौन से आपके पैसे जाएंगे। अच्छा ये फरवा गुल हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे थैंक यू वेरी मच फरवा कहती है टॉपिक पहले क्रीम का नाम चेक करती हूँ अच्छा ये अच्छी बात है। अच्छा फहीम भाई लिखते हैं कि बिना दिल जिया सी तो छा थी पयो थी पत्थर वया सी तो छा थी पयो जदे खिल खुशी मोकलाए वही झुकिया सी झुड़िया सी तो छा थी पयो अच्छा थोड़ो जो अगते जो लाइन है ना वो थोड़ा चवंदा तो यार न पढ़ो इन कर न पढ़ासी सो थैंक यू सो मच प्यारा भात आस से गड मौजूद आयो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम कदें इस्तेमाल करना बुधायो था वरी चौथा दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम कराची क्लिफ्टन में कहाँ मिलेगी अब ये आप वहाँ जाइए मालूम लीजिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है अगर नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उनके ऊपर रब्ता कीजिए।

फरवा की थी यहाँ पे ये पोइट्री है, मोहब्बत की सजा कुछ यूं मिली हमको, खुद से बिखर कर भी तेरे ही रहे हम। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कुंभर मुश्ताक कुंभर हली पोटो स्टाफ खान तासा के ज्वाइन कयो आहे, सो मोहब्बतूं आहिनि तव्हां जूं। और जी मुजाहिद राजस्थानी हमारे साथ ये थे, माशाल्लाह यू शो, थैंक यू। बिल्कुल जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त असां सां शेयर कयो। ऐं बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करणु वञो था, जी फरवा असांखे चयो त मां जॾहिं प्रोडक्ट परचेज़ कंदी आहियां त मां हुन जो नालो ॾिसंदी आहियां, त बिल्कुल जॾहिं तव्हां कोई बि प्रोडक्ट परचेज़ कंदा त तव्हां यकीन, मूंखे त यकीनन इहो लॻंदो आहे त तव्हां हुन प्रोडक्ट ते जेको मॉडल जो फोटो हूंदो आहे न उहो ॾिसंदा हूंदा। पर तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करणु वञो था ऐं तव्हां ॾिसंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे जेको डबी आहे न उन ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, ऐं इहा बि हिकिड़ी निशानी तौरु मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थी, अगरि तव्हां दुकानदार खां वठो त हू तव्हांखे जहिड़ी तहिड़ी क्रीम न पकड़ाए छॾे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी नॉलेज हुजे त बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठणु वञूं था त कहिड़ी आहे, कीअं आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो लॻियल आहे, ऐं हिन मां इहा ॻाल्हि साबित थिए थी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, दिलि खोले इस्तेमालु कयो, कोई साइड इफेक्ट न आहे, तव्हां मर्द मायूं सभी लॻाए सघो था।

से गोठानी छोरी भरे भाई दिल जो करार आए हाय अच्छा अब्दुल रजा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया हूँ मीरपुर खास गांव मुश्ताक कुंभर इस्तेमाल करे पयो रिजल्ट बेहतरीन अच्छे पयो वदी सिदरा वाह साईं वाह मोहब्बतूं आइन भाईरन जो और फहीम भाई कहते हैं भाऊ टॉपिक डेट चेक करते हैं एक्सपायर तो नहीं है बहुत अच्छा करते हैं और दादाला कहते हैं डब्बा देखता हूँ सबसे पहले डब्बे पे क्या देखते हैं वो ही बताना था।

रुको जी, खूबसूरती जो कमाल आई, खूबसूरती तुम्हें तनी मिलेंदी जनी तुम्हें डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा। ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर शहजादी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ऐसा वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है बताओ मुझे जल्दी जल्दी। अच्छा, अब्बास महर हमें सुन रहे हैं। अब्बास महर, आपको वेलकम कहा जाता है। थैंक यू के साथ आप हमारे साथ हैं। और गोट गुलाब लगा रही, खान साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम कहते हैं शो में, कहते हैं आपका शो बहुत नाइस है। और सुरिया सुमरो का आपने गाना बोला है जो कि हम लगाने की कोशिश करेंगे। मजहर अली तुनियो हमें सुन रहे थे। अदी सिद्रा सॉन्ग बिल्कुल आपका गाना भी लगाते हैं। और हमारे साथ है रूबी अली एंड नंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो। अदी सिद्रा, हम आपका प्रोग्राम से सुनते हैं। आज प्ले मुनवर मोलाई हथ मथे क्यासी ढाढो आ। ओके जी, ओके, बिल्कुल तांजी पसंद जो गानो हलायूं था। और कश्मीर से अखलाक भाई आ, तमाम भी गाने जी फरमाइश कई आ है। आई छाता चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आ है। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आ है। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाचे घर में केर केर इस्तेमाल करी पयो या केर चाहे तो बाबा मुके वठी आणे दियो। छो त कुछ खवातीन एडी हुंदा जेके बाबा मार्केट न वनी सघंदियूं आ, उनन के वरी थोड़ो इलाज करणो पवंदो आ घर जे मर्दन के। अगर तांजू भेनर तांजू वाइफ्स आई तवांजू अमड़ी तवां के चवन तो बाबा असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आने जो तो उनके वठी आने देजो, ये नखरा न कंदा कयो। सो जगी जगी असा के बुधन पया सब मानो तहां पांजे घर में सबनीन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे देसो, तवां के यकीनन डाडी पसंद इंदी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आए, इलाही सारा कमाल आता है। बिल्कुल सभी प्रोग्रामों में तक बुधाइंदा रहासी, पर टाइम थो आई वेठूँ था बाबा न्यूज ब्रेक, उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूँ, वापसी जल्दी मोटी तीन कार्य न वो इतने वेठा हो वही मोटा कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अवांखे कहिड़ो मसलो आहे, एडवोकेट जनरल चयो त सवाल वकील के न पर कमीशन के करणो आहे। कमीशन घरु वज़ीर जे अलंजार के नोटिस जारी करण जी हिदायत करे छॾी। न्यू सिंध जा सऊदी शहरनि ते हमला, 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। होसिन सऊदी शहर अबा खुमेस मुस्तीब नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिबि होसिन जे शहरनि ते हमले जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। ईरान मुआशी जारियत जारी रखण ते विचोभर में बहरी ज़ोन क़ाइम करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखंदी। रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बहरी ज़ोन क़ाइम कयो वेंदो। ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटि थींदियूं। अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो। ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार किरण न ॾिना वेंदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जे ऐलानियल 27 सितंबर ते ऐलानियल एहतजाज बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी, ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो। अदालत चइनि सूबनि जे आईजीज़ ऐं एडवोकेट जर्नलिस्ट खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सितंबर ताईं मुलतवी कई वेंदी।

जरगो गोठ मोहम्मद हयात बाजकानी में मीर जरियाब खान जे सरपंची में न्यू सईदाबाद वे जो एसएम बचाओ बंद भरसा मच्छी मारण लाए वेल नौजवान ढोरे में बुडी वयो गोला जारी पुलिस एक जने के हिरासत में वठी छड्यो नूर केटी थाने जी हद में गोठ भाई खान वटे एमएस बचाओ बंद ता

0: भाव खोसो वेझो अणजातल हथियार बंधन गोदो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छॾी अणजातल हथियार बंधन राति जे वक़्तु पिकेट खे ड्राए पट करे छॾियो पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तार लाइ कोशिशूं जारी आहिनि खे गिरफ़्तार करण कॉलोनी में हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे कोर्ट खिलाफ़ मार्च मेयर जे बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी जे रहवासियुनि बुनियादी सहूलियतनि जे कोर्ट खिलाफ़ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन पारां टिनी कॉलोनियुनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
6: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
6: साफ हो, सुथरी हो, नरम और फ्रेश महसूस होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरती और खूबसूरत नजर आना ये काफी नहीं होता, बल्कि अपनी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हम इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते कि भाई क्या बार बार फेस वॉश करना, क्या रात को फेस वॉश करके सोना। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई अगर हम रात को फेस वॉश नहीं करके सोएंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन रात को फेस वॉश अगर आप नहीं करते हैं और वो ये आपकी आदत कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चलती आ रही है, लेकिन आप रात को फेस वॉश नहीं करके सोते हैं, तो यकीन जाने इसका असर आगे जाकर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, और खास करके उन लोगों की स्किन के लिए जिनके चेहरे पर ना बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है, स्किन सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है, या फिर एक्नी वाला चेहरा है। जनाब जिन लोगों की स्किन जो है ना वो थोड़ी सी ऑयली स्किन है, या फिर सेंसिटिव स्किन है, या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी निकल आते हैं, तो आपको तो और ज्यादा केयर की जरूरत होती है, आपको तो और ज्यादा केयर करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती आ रही हूँ कि आपने क्या करना है, आप अपनी डेली ब्यूटी रूटीन में शामिल कर दें डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपनी जल्द को केयर देने के लिए उसे ना अपने रोजमर्रा की स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लें। सुबह अपनी रूटीन मुकम्मल करते हुए या शाम को आप दिन भर मसरूफियात की वजह से ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन केयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर किसी को रात का टाइम जो मिलता है ना उसमें थोड़े से आप 10 मिनट अपने लिए निकालें। 10 मिनट तो मुझे लगता है कि ये 10 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, इससे भी थोड़ा वक्त लगेगा कि आप अपना फेस वॉश कर लें और अच्छे से चेहरे को क्लीन करने के बाद आप अपने चेहरे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर लें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन है, और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अंदर आपको जैसे कि बताती हूँ कि भाई अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई हैं, शामिल की गई हैं, और इसीलिए शामिल की गई हैं ताकि आप लोगों की स्किन जो है ना वो बेहतर बन जाए, आपके चेहरे को अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए और आपको बहुत ज्यादा स्किन केयर के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी डेली लाइफ की रूटीन में ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, जल्दी से ऐड कीजिए और अपनी खूबसूरती का जरा ख्याल रखते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मुनासिब सी कीमतों के अंदर मिल रही है, तो बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 0312-50-25-907 पंजवी है 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 0332738-4309 3 है। हाँ जी 73-84-309। बिल्कुल यही नंबर है जो कि आप डायल करेंगे। अगर एक नंबर बंद होगा या बिजी होगा या नहीं उसके ऊपर आपको रिस्पांस मिले तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर बसानी आप परचेज करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जरा टॉपिक को भी फॉलो कर ले। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी लिए कोई भी जब ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस ब्यूटी प्रोडक्ट को परचेज करते साथ ही सबसे पहले उस पे क्या चेक करते हैं, कौन सी चीजें जो कि आप सबसे पहले चेक करते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। बाकी जो लोग मैसेज कहना चाहते लेकिन उनको तरीकेकार नहीं पता, तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं जनाब, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। और जब आप हमारा पेज सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम होता है, कमेंट भी आप कर दिया करें, क्या ही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तो आपके कुछ मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं। आपके मैसेजेस अगर कमेंट्स की जानिब आते हैं

अच्छा यासीन खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम से हमारे साथ मौजूद हैं। और फहीम कहते हैं कि भाऊ संडे वाले दिन हमारे ऑफिस जो है ना वो बंद होते हैं, फिर जाऊंगा विजिट करूंगा कहाँ मिलती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम और मैं डी स्किन का फेस वॉश खरीद करूंगा। चलें जी आप मालूमात लीजिएगा, वहां पर है तो फिर आप परचेज कीजिएगा, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें या फिर डी स्किन फेस वॉश परचेज करें। वैसे अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर पाए तो आप किसी को तोहफा दे सकते हैं, समझ रहे हैं तो किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। अच्छा मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मुगल उमरानी आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। और वजीर हमारे साथ हैं, वजीर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से डॉक्टर वजीर अली, नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। अनवर भाई कहते हैं कि उहे भी के डिया हुआ हाणे जिन के नजर अचन थियो हजार खामियों असा में साईं, कदे उहे चवंदा हुआ तो जड़ो कोई ना है अली, यो डटो डींदा हुआ मेरे हरू भरू जाई मानन जी गालन में नहीं था गयो। अच्छा रमजान भाई कहते हैं मौला सलामत, मेरी बहन कैसी हो, अल्लाह से आपको आमीन जी आमीन, बस ऐसे ही दुआ दिया करें। और उसके अलावा वजीर भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगाते हैं। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, मौला अली सलामत कहते हैं फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना शाहिद बबर का कलाम, थैंक यू जी जी बिल्कुल आपकी पसंद लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो आप, शो में आपको वेलकम कहता हूँ। और आपने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल जी आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा रिजवान भाई। और चाचा खाली चुनी जो आ चुके हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, आई एम नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग योर शो बेटा सिद्धू, आई वाज एडमिटेड इन। हाँ भाई वो फहीम भाई ने बताया था, क्या हो गया आपकी तबीयत को इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई है, ख्याल तो आप अपना रखते नहीं है तो ख्याल रखा करें और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली जी जी बिल्कुल प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है। उनके अलावा हमारे साथ पैनल पर आते हैं तो कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन एक अदद हम गाना भी लगा दी लिस्ट में तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला हमारे पास एक गाना है जिसकी फरमाइश थी किसी भाई ने कर दी थी, तो चलें जी साथ साथ इस गाने को भी सुनते आए। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं आप बताएं बिलाल कैसे हैं।

ओके जी, अब्दुल गफार भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब्दुल गफार भाई क्या कह रहे हैं? खुश आमदीद जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नवाब शाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, नहीं पता नहीं कहाँ से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी होगी, आप जाइए वहाँ से मालूमात लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बता दिया करें, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 1812 5970 970। इहो नंबर अगर बंद हुजे, मसरूफ़ हुजे, नए नए तव्हांखे रिस्पॉन्स मिले त ॿियो बि नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे सघो था। ऐं नंबर आहे 2832 73 84 309। हां जी, सिंधी में नंबर यादि कया आहिनि। अंग्रेजी में नंबर ॿुधाईंदा असांखे समुझ में न ईंदो, बाबा तव्हांजे लाइ सिंधी बि ॿुधायां थी हाणे। तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजे गरीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। ऐं हाणे गानो आहे हलायो, हथ मथे कयासीं ॾाढो आहे बाबा, हिन गाने जी बि फरमाइश हुई, अचो त मिली करे इंजॉय था कयो।

నవనతా బాబా, నవనతా చేస్తాయి టీ స్కిన్ బ్యూటీ క్రీమ్ నేస్తాం కదా. राबतो करे वेठो ऐं जल्दी जल्दी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वेठो. बिल्कुल सी फडा न कयो इन ॻाल्हि में, फडा न कयो. पंहिंजे खूबसूरती सां कहिड़ा लेखा भला, पंहिंजे खूबसूरती सां जेके माण्हू लेखा कंदा आहिनि उहे वक़्त खां पहिरियां कुराड़ा थी वेंदा आहिनि. अगरि तव्हां पंहिंजी खूबसूरती सां लेखा नथा करणु चाहियो ऐं तव्हां वक़्त खां पहिरियां कुराड़ा नथा थियणु चाहियो, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कयो. ऐं बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे एतिरो भलो रिज़ल्ट मिलंदो. जीअं मायूं महांगा महांगा फेशियल कराए ईंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं उन्हनि खे अहिड़ो फेशियल मां रिज़ल्ट मिलंदो आहे, चवंदा आहिनि बाबा ॾिसो ॾिसो भलो रिज़ल्ट मिलियो आहे, त उन खां बि भलो रिज़ल्ट तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾींदी. छो त हिन जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहिनि ऐं माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे न, इहे एतिरो पावरफुल हूंदियूं आहिनि इहे चीज़ूं, जेके तव्हांजी स्किन जे अंदरि ताईं वञी तव्हांजी ख़ूबसूरती खे सफ़ा वधाए छॾींदियूं ऐं तव्हांखे सफ़ा वी आई पी गोरो चिटो बणाए छॾींदियूं.

हाणे ही गानो ॿुधो गाने खां फौरन बादी असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वञूं था हुन खां पोइ जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो पपन बुलो ॿुधो ऐं मां ओ हीअं वञी ओ हुटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स

फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है। पीएस तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे

0: पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: डॉक्टर नूर हुसैन पुस्यो MBBS FCPS तजुर्बेकार ए माहिर जनरल फिजिशियन इते मेडिसिन सा लागापियल सबनी बीमारियों जो इलाज कयो वने तो जैमे मलेरिया जो बुखार टाइफाइड खंघ नज़लो जुकाम छाती जा इन्फेक्शन शुगर ब्लड प्रेशर गैस अल्सर कब्ज मैदे हाजमे जा मसला थायराइड जा मसला मोटापे जो इलाज वाइटमिन्स की कमी थकावट कमजोरी जिगर ए पेट जो बीमारियों जोड़न जो सूर ए दिल जे शुरुआती बीमारियों जो बेहतरीन इलाज कयो वने तो डॉक्टर नूर हुसैन पुस्यो माहिर जनरल फिजिशियन एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स सामू आर्ट्स काउंसिल सचल कॉलोनी लाड़काणो टाइम रोजाना शाम जो 4 वगे खां रात जो 9 वगे ताईं आचर ते मंझन जो 2 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं याद रखंदा जुमे जे दी मुफ्त चकास कई विंदी आहे राबते जे लाए मोबाइल नंबर 0305-1231-559
2: खूबसूरती वो जो नजर आए जैसे इन फूलों की बागात में कुदरत के हसीन नजारों में और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल वाइट एक्टिव कंबाइन व्हाइटनिंग फॉर्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए जेल से डार्क स्पॉट्स रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे दिन बदन जेल को ब्राइट करे 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ 5-स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर 0307-346-8474
1: खुशखबरी लाड़काने जो मशहूर ए अगूणो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो ए गंबट इंस्टीट्यूट

0: बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटा अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03075921200।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे,
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर, राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टाउन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामले प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाने के साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर अभी तक बाकी है। ओके जी, आप बताएं और मैं आपको बताने लगी हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ मौजूद हूँ। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदी। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। उनका अलावा अगर तुम्हारा पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराइन चाहियो था तो तुम जल्दी जल्दी डायल कयो 03-12-50-25-907। बड़ी 312 पंजाब 25-970। आई योर नंबर आहे 03-27-38-43-09 यानी बुड़ी 332 73-84-309।

भाई इसका तो मुझे भी मतलब पता नहीं है क्या होता है इसका मतलब, कोई ऐसा इंसान बताए जिसको बलूची आती है। जी बस दिल भर बस साउंड अच्छा लग रहा है, बाकी तो एंजॉय करो और क्या। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है, तमाम भी सोना सोना थी वेंदा, तमाम भी हसीन थी वेंदा, तमाम भी

जी, सो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि जब आप अपने लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज सबसे पहले आप नोटिस करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले आप देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप परचेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जो है ना वो, हाँ जी, नाम देख लेते हैं, कुछ लोग मॉडल की फोटो देख लेते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि भाई इस क्रीम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई, और कुछ लोग देखते हैं जी एक्सपायर डेट क्या है क्रीम की, प्रोडक्ट की, जिस भी चीज की। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं। और ये प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है फरीहा परवेज जी की आवाज में, आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी।

अपना बना ले, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपना बना ले. और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए, अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन में मजीद जो है ना वो निखार ला देगा, आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह जो है ना वो मॉइस्चराइज भी हो जाएगी. आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना, आपकी ऐसा ही होता ना कि आपकी जो शख्सियत है वो आपकी जल्द से भी बहुत ज्यादा जानी जाती है. अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जल्द जो है वो हमेशा फ्रेश नजर आनी चाहिए, तरोताजा नजर आनी चाहिए और पुरकशिश नजर आनी चाहिए, नो रिंकल, नो फ्रिकल, नो एक्नी, नो एक्नी मार्क्स, तो आपने क्या करना है, आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम ले तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर आप तक कीजिएगा. उन भाई साहब से मालूम लीजिए, भाई साहब क्या करें बताएं तो क्योंकि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो लाजमी परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए.

0: अल्लाह निशानी जाने
1: भाई। आजकल फरीहा परवेज के गाने मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, क्या ही बताऊं। यानी कि ये इतनी ओल्ड सिंगर है तो इसके गाने तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, सारे गाने जो भी उठा ले, एक एक गाना इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लेकिन हाँ, ये आजकल मुझे क्रेज चढ़ाया गया, आजकल मुझे फरीहा परवेज के गाने जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और खास करके वो एक जो मैं आपको ज्यादा सुनाती हूँ समझ गए होंगे।

ओके जी, गाना हो गया खत्म और यहाँ पर एक और गाना हमारी लिस्ट में है, जरा वो भी हम सुनेंगे और साथ साथ ये गाना होने वाला है जी मास्टर मंजूर की आवाज में। हाँ जी, तो हम ये प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाने के क्या तरीकेकार हो सकते हैं, वैसे तो कुछ लोगों को लगाने के तरीकेकार भी मालूम नहीं होते हैं, तो लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये होंगे कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप जो है ना परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप परचेज करेंगे उसके बाद, और आप रात के टाइम जो है ना सोने से पहले बस अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लीजिए। ये आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। जब आप कुछ दिनों के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो हमने 5-10 मिनट अपने लिए निकाले थे ना, ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमें। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए रात के टाइम, अच्छे से चेहरे को क्लीन किया करें। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं या फिर आप लगा रहे हैं तो फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप क्रीम लगाएं ना लगाएं, फेस वॉश आपने लाजमी करना है। फेस वॉश करें सबसे पहले, अपने चेहरे पर ये जो डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, सारे दिन की जमा हो जाती है आपके चेहरे के अंदर, तो उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको वॉश कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई हल्के हल्के हाथों से लगाएं और जो क्रीम है ना वो आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि बस ये सही होता है। कुछ चीजें वाकई जो होती ना सही, तो बस उनको बता दिया करें कि हाँ ये चीज सही है, तो बस ऐसे किया करें। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप हल्के हल्के हाथों से और नरम नरम हाथों से लगाएंगे सॉफ्टली, क्योंकि कुछ लोग बड़ा हार्ड तरीके से लगाते हैं, मसाज करे होते हैं नाइट क्रीम के ऊपर, तो ये चीज से जरा गुरेज किया करें। इन चीजों से थोड़ा सा जो है ना वो पास होकर ना कहो बाबा ये चीज वक्त हली तव्हांखे नुकसान ईंदव। सो असां चाहियूं था त तव्हां हमेशा जेको पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं हमेशा तव्हांजी खूबसूरती जेका आहे न उहा सफ़ा ईअं बहितर तरीक़े सां हुजे। ऐं तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो त सॉफ्टली कयो ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट मिले उहो अहिड़ो मिले जो तव्हां ॾिसी करे चओ वाह साईं वाह कमाल थी वियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि ॻाल्हि आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट फार्मुलेशन आहे, त इन जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ज़बरदस्त जेको तव्हां सोचींदा आहियो त बाबा हीउ रिज़ल्ट असांखे मिले पर कहिड़ो प्रोडक्ट ॾींदो, त बेशक तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾेई रही आहे उहो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशह हासिल कंदा आहियो ऐं करणु चाहियो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मिले भाई मर्द मायूं हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, मुनासिब कीमत में तव्हांखे मिली रही आहे। तव्हां वञो बाबा परचेस कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो थोरो ख़्यालु रखो।

ओके जी वाह सही वाह ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां एंजॉय कयो पिया प्रोग्राम आहे वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां अगरि तव्हां बि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में मालूमात हासिल करणु चाहियो था या तव्हांखे ख़बर न आहे त बाबा जेके प्रोडक्ट असां इस्तेमालु कयूं पिया इन्हनि खे असां छो इस्तेमालु कयूं पिया कुझु माण्हू वीचारा इलाही मासूम हूंदा आहिनि त हुननि खे बसि जेको बि दुकानदार प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो आहे न त हू इस्तेमालु करणु लॻंदा आहिनि अगरि इहा चीज़ तव्हां में बि आहे त बाबा पंहिंजी थोरी नेचर खे चेंज कयो इहा चीज़ सफ़ा पाण मां कढी छॾियो तव्हां वञो दुकानदार खे चओ बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठणु आया आहियूं ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी पोइ ई वेंदासीं अगरि दुकानदार चए त असां वटि इहो प्रोडक्ट कोन्हे अवेलेबल त तव्हां हुनखे नंबर ॾेई अचो जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई ऐं चओसि त भाउ हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं पंहिंजी दुकान ते ई प्रोडक्ट अवेलेबल करायो जीअं तव्हां वटि अवेलेबल थी वञनि ऐं पोइ असांखे वठण में आसानी थी वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा खोर सारा फ़ाइदा जेके सॼे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आई आहियां हाणे तव्हां ते डिपेंड करे थो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं वठंदा कॾहिं इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसूं था केतिरा ख़ूबसूरत थी वेंदा अच्छा कुझु मैसेजिस आहिनि टाइम बि तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो और साइमा मीर हमारे साथ मौजूदु कहती हैं सुना है कि गरीब के बच्चे वफादार अमीर के बच्चे बेवफा ऐसा भी नहीं होता और कहती अच्छा सिंधी सॉन्ग अच्छा है लेकिन किसी के लिए किसी और को छोड़ना बेवकूफी मानी जाती है सामने वाला चाहे कितना भी डेंजर क्यों ना हो लेकिन हाथ हमेशा ये भी ठीक है जी ये भी ठीक है और ये हमारे साथ मौजूद है कहती योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड योर शो इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिठोरो से दाऊद जमाली हमारे साथ है एंड ओसामा अवान एंड सर्वर मीरानी प्लीज प्ले सॉन्ग फोजी सुमरो ओके मैं कोशिश करूंगी टाइम बच गया तो आपके लिए लाजमी आपकी पसंद का जो गाना है ना वो चलाया जाएगा और सागर भाई कहते हैं कि गिफ्ट कयो असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठो पांजी वठो मां कंहिं कंहिंखे गिफ्ट कंदसि पाण वठो रेशम गली वञो उतां मालूमात करायो ऐं उन खां अलावा जेकी जेकी असांजा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते हलिया वञो पंहिंजे मार्केट हलिया वञो ऐं उतां मालूमात वठो तव्हांखे हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सां मिली वेंदी अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी तो ॾाढी प्यारी आहे अवांजी बस ॾिसो ॾिसो तारीफ़ न कंदा कयो अला फरवा गुल मारे साथ ही फरवा तव्हांजो मोबतू आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया हिदायतला कहते एक ये सिंगर दो दफ़ा क्यूं नहीं नहीं एक ही सिंगर एक मरतबा चला है और इन खां अलावा रमज़ान भाई आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताए या नहीं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रही है या फिर नहीं अच्छा चाचा तव्हांजो जेको गानो आहे न पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदासीं ठीकु आहे और जी सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है सालार सिकंदर जी आपको वेलकम

पंहिंजो हिकिड़ो भेरो अचो असां सां ॻाल्हाए ॾाढो वीआईपी गानो असां ॿुधूं पिया और यहां पर गुलाम हुसैन अबड़ो लिसनर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू वेरी मच और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही होगी अगर नहीं मिल रही तो आप लाजमी मालूमात लीजिएगा फिर परचेज करके मुझे बताइएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा माहिर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आप हमारे साथ पूरा प्रोग्राम सुनते हैं जी थैंक यू सो मच इसके लिए

में कैसी नाराजगी की बतानी पड़ रही है कि हाँ भाई मारो ठल आया चमुखे मनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, और मुलाजिम भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम दादी भलिया है। बिल्कुल जी चाचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदो आहे। अखलाक भाई कहते हैं सिदरा तमा वन्यो था हाणी हा लगी तई तो मुखे हाणी वन्यण घुर्जे। फहीम कहते हैं भाऊ मेरी सिंधी वाली पोएट्री आपने गलत रीड की। भाई सिंधी मेरी जरा वीक है तो इसके ऊपर ये क्यों और कैसे ये मत बोला करें। और उन खां अलावा अज जो सवाल हुयो त उन खां अलावा जेको भी तमा मानो न मुखे यो जवाब दिनो त असा एक्सपायरिंग डेट जका है उहा चेक कना आयो त ई डाढा मानो भला हुंदा तव। अगर ता कोई भी प्रोडक्ट परचेस कयो था न तबियूं सब चीजों त ता बाद में चेक कयो, पर जका एक्सपायरिंग डेट आ न उन के सब खां पहिना चेक लाज़मी करे वठंदा कर। त कई मरतबा ई थिनो तवा के जको प्रोडक्ट आ न वो एड़ो मिली वेंदो आहे जेको एक्सपायर्ड हुंदो आहे। ऐं जॾहिं तव्हां हुनखे इस्तेमालु कंदा, जॾहिं ॻोठाणा वीचारा कुझु मासूम हूंदा आहिनि, त जॾहिं तव्हां कोई बि प्रोडक्ट वठो त हुनजी एक्सपायरिंग जेका डेट आहे न उहा लाज़मी चेक कंदा कयो। उहा डेट ॾिसी पोइ तव्हां प्रोडक्ट परचेज़ कयो ऐं इस्तेमालु कयो, जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले सफ़ा बहितर तरीक़े सां। ऐं हाणे इजाज़त ॾियो मूंखे, वरी तव्हांखे जॉइन कंदासीं 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखो, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था। जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, को गानड़ो छानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। बाबा मोकिलाणी न आहे। सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच जारी. वकील जिब्रान नासिर के सवाल ते एडवोकेट जनरल जी मुदाखलत. कमिश्नर एडवोकेट जनरल जी मुदाखलत ते घरू वजीर जयाल अंजार के नोटिस जारी करने की हिदायत करे छी. कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सयाल एडवोकेट जनरल के मुखातिब थींदे चयो त सिंध हुकूमत तरफा अवां छो परेशान आयो. फरियाद लालपुर चयो त खानदान के मुतमिन करण लाइ अदालती कमीशन जोड़ियो वञे. जेकॾहिं खानदान जा कुझु सवाल आहिनि त वकील ज़रिए पुछण चाहिनि था त अव्हां खे कहिड़ो मसलो आहे. एडवोकेट जनरल चयो त सवाल वकील खे न पर कमीशन खे करणो आहे. कमीशन गुरू वज़ीर दयाल अंजार खे नोटिस जारी करण जी हिदायत करे छॾी. न्यूसिन जा सऊदी शहरनि ते हमला. 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी. न्यूसिन सऊदी शहर अबाक में मुश्तेक निज़रान ऐं जाज़ान ते हमला कया. हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया. सऊदी इतिहादी फोर्स मौजूदु होसियन जे शहरनि ते हमले जो सख़्तु जवाब ॾिनो वेंदो. ईरान मुआशी जारियत जारी रखण ते विच ओभर में बहिरी ज़ोन क़ाइमु करण जी धमकी ॾेई छॾी. ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखी त रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बहिरी ज़ोन क़ाइमु कयो वेंदो. ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटि थींदियूं. अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो. ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा. इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई जे ऐलानियल 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल एतिराज़ बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी. अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी. ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो. अदालती चयनि सूबनि जे आईजीज़ ऐं एडवोकेट जनरल्स खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो. दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी कई वई. सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह पारां स्कूल जे वक़्त में कलाक घटाए करण जो ऐलान. कराची में तकरीब के खिताब कंदे सरदार शाह चयो त ॿारनि पारां वधीक वक़्तु हुअण ऐं बुख लॻण जी शिकायत ते वक़्तु घटाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे. स्कूल जी मोकल हाणे 2:30 वॻे बदिरां 1:30 वॻे थींदी.

0: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस के जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो इफ्तिताह करे छो। मोहसिन नकवी कंट्रोल सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों जो दौरो करते करे जायजो वरतो आए जी इस्लामाबाद पेंजे ऑफिस में सेफ सिटी पुलिस ऑपरेशन अमून अमान की सूरत हाल के पान मॉनिटर करे सकंदो। कराची में केएमसी के हेड ऑफिस के बाह मेयर की ऑफिस सड़ी रखती वही। एमेजना रोड से कायम केएमसी के ऑफिस के बाह किचन में लगी बाह के नतीजे में मेयर मुर्तजा वाब की ऑफिस सड़ी रखती वही। फायर ब्रिगेड के बिन गाड़ियों बाह से जब्तो आंदो बाह सबब को जानी नुकसान न थे। मटियारी वेझो घर की छत किरी पई एक जनो फोत ब जख्मी। खानोट में घर की छत किरण सबब नंड सुतल आशिक शेख फोत थो एक औरत बाड़ी जख्मी थी। गौसपुर भरसा बाजकानी भगवार बिरादरी के बिन धुरी में हलंदड़ तकरार के निबेरे लाए जिरगो गोठ मोहम्मद हयात बाजकानी में मीर जरियाब खान की सरपंची में झेड़ीदड़ धुरी जहा मू भी शरीक थे। 16 साल का हलंदड़ तकरार दौरान मजमू तौर से 4 जना मार वाया हुआ। न्यू सईदाबाद वेझो एसएम बचाओ बंद भरसा मच्छी मारण लाए वेल नौजवान ढोरे में बुडी वयो। गोला जारी पुलिस एक जने के हिरासत में वठी छो। नूर केटी थाने की हद में गोठ भाई खान वट एसएम बचाओ बंदन ता पेर तिरकड़ सबब नौजवान राजा बुडी वयो। पुलिस रफी के तहवील में वठी जांच शुरू करे छी। भाव कोसो वेझोण जातल हथियार बंदन गोठ गोधो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी। अणजातल हथियार बंधन रात के वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट कर छो। पुलिस जो चवण है जवाबदार की सुणप ए गिरफ्तारी लाए कोशिश जारी आन खे गिरफ्तार किया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: असली जी जान चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद। जी जान चारों मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: दोगुना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

सिंध असेंबली में एम क्यू एम जो ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिलण ते एहतजाज। स्पीकर डाइज़ार नारेबाज़ी एम क्यू एम जे एहतजाज दौरान सिंध असेंबली वफ़ाक़ी हुकूमत खां पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस क़ादिर शाह जी सदारत हेठि शुरू थियो। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद असेंबली मेंबर्स पारां अहवान वारियूं वीडियो सोशल मीडिया ते रखण वारो मामिलो उथारियो। स्पीकर चयो त मेंबर जा नाला ॾियो। एम क्यू एम मेंबर्स मामले ते एहतजाज शुरू लिवी ख़तम नथी करे सघे। वफ़ाक खां लिवी ख़तम करण जो मुतालबो करे सघे थी। स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुल्तवी करे छॾियो। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। वकील जिबरान नासिर जे सवालनि ते एडवोकेट जनरल जी मुदाख़लत कमीशन एडवोकेट जनरल जी मुदाख़लत ते घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे नोटिस जारी करण जी हिदायत करे छॾी। कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सयाल एडवोकेट जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त सिंध हुकूमत तर्फ़ां अवां जो छो परेशान आयो। फरियाल टालपुर चयो त ख़ानदान खे मुतमिन करण लाइ अदालती कमीशन जोड़ियो वञे। जेकॾहिं ख़ानदान जा कुझु सवाल आहिनि, वकील ज़रिए पुछण चाहिनि था त अवां खे कहिड़ो मसलो आहे। एडवोकेट जनरल चयो त सवाल वकील खे न पर कमीशन खे करणो आहे। कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे नोटिस जारी करण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां सऊदी अरब ते हुसी बाग़नि जे हमलनि जी मज़म्मत। सऊदी अरब सां गॾु रहण वारे आज़म जो बि वर्जाउ। शहबाज शरीफ चयो त सऊदी शहरनि ते हमला मज़म्मत जोॻा आहिनि। हमलनि में ज़ख़्मी थियल शहरनि जी जल्द सेहतियाबीअ लाइ दुआगू आहियूं। पाकिस्तान सऊदी सलामती ऐं ख़ुदमुख्तियारी जी दिफ़ा लाइ गॾु बीठल आहे। यमनी होसियन जा सऊदी शहरनि ते हमला। 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। होसियन सऊदी शहर अब्बास खुमिस मस्तेक निज़रान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिबि होसियन जे शहरनि ते हमले जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। ईरान जंग नथो चाहे पर मज़म्मत तां पोइते बि न हटंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान सदाई जंग जो मुख़ालिफ़ रहियो आहे ऐं कॾहिं बि जारी नाहे रहियो। ईरान जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रहियो आहे। पंहिंजे मुफ़ादनि जो दिफ़ा जारी रखियो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट फेमीदा पिताफ़ी केस में आई जी सिंध खे शोकाज नोटिस जारी करे छॾियो। आई जी सिंध घरू सेक्रेटरी डीआईजी सखर एसएसपी घोटकी ऐं जांच आफ़ीसर खे 21 सेप्टेम्बर ते ज़ाती तौर पेश थियण जो हुकुम। अदालत नारी फेमीदा पिताफ़ीअ खे सरदार अब्दुल बारी पिताफ़ी हवाले करण बाबति बि जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। फेमीदा जी बाज़ियाबी ऑपरेशन जी निगरानी आई जी हवाले डीआईजी सखर ऐं एसएसपी घोटकीअ खे आई जी सिंध जी निगरानीअ में कम करण जो हुकुम। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जी अदालत लिखित में ऑर्डर जारी करे छॾियो। केस में जेकॾहिं को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुजे त कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जे 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल एहतजाज बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी। ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो अदालत चइनी सूबनि जे आईजीज़ ऐं एडवोकेट जनरल्स खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी कई वई।

सिंध के तालीम वाले वजीर सरदार शाह पारा स्कूल के वक्त में एक कलाक घटताई करण जो ऐलान। कराची में तकरीब के खिताब कंदे सरदार शाह चयो तो बारन पारा वधीक वक्त होण ए भुख लगण जी शिकायत ते वक्त घटाण जो फैसलो कयो आहे। स्कूल जी मोकल हाणे 2:30 वगे बदरां 1:30 वगे थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 50 जदीद गाड़ियूं इस्लामाबाद पुलिस हवाले करे छॾियूं। वज़ीर आज़म जदीद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियूं आईजी इस्लामाबाद हवाले कयूं। शहबाज शरीफ चयो त शहरनि जे तहफ़ुज़ लाइ समूरा घुरबल कदम खया वञनि। ॾोहनि ते हर सूरत में ज़ाब्तो आंदो वञे।

0: कान टिन सालन जी करप्शन केसेस जा तफसील तलब करे वरता नेब एफ आई ए का 2023 का 2025 ताई जो तफसीली रिकॉर्ड तलब कयो नेब एफ आई ए का खरीदारी ठीकन माली इंतजाम सरकारी असासन जे इंतजाम बाबत शिकायतन जांच एफ आई आर ए चालान जो रिकॉर्ड पेश करण जी हिदायत कई। कराची में केएमसी जे हेड ऑफिस के बाहर मेयर जी ऑफिस सड़ी रख थी वही एम एन जिना रोड ते कायम केएमसी जे ऑफिस के बाहर किचन मां लगी बाहे जे नतीजे में मेयर मुर्तजा वाब जे ऑफिस सड़ी रख थी वही फायर ब्रिगेड जे बिन गारिन बाहे ते जाब्तो आंदो बाहे सबब को जानी नुकसान न थियो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहान संगीन इल्ज़ाम हेठि मुअतल एडिशनल कंट्रोलर इम्तियाज जागीरानी के मुअतल कयो वियो जांच शुरू कमीशन जे मेंबर विक्रम सिंह के जांच ऑफिसर मुकरर कयो वियो ज़रिए जो चवण आहे त इम्तियाज जागीरानी ते संगीन इल्ज़ाम आहिनि। कराची में सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन जे मुलाज़िमनि जो प्रेस क्लब वारो ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज जारी मुलाज़िमनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करण बाद अलामती भुख हड़ताल बि कई मुलाज़िमनि चयो त हुकूमत जाइज़ मसला हल करण लाइ तयार न आहे जाइज़ मुतालबा तस्लीम कया वञनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509 03000 510509।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। थी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
7: 03013992836
8: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सां खरचारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर से बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में

0: जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तेहूसी बाग़ियनि जे हमलनि जी मुज़म्मत सऊदी अरब सां गॾु रहण वारे अज़म जो बि वरजाओ। शबासे चयो त सऊदी शहरनि ते हमला मुज़म्मत चुका आहिनि। हमलनि में ज़ख़्मी थियल शहरीनि जी जल्द सहतियाबी लाइ दुआगू आहियां। पाकिस्तान सऊदी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारी जे दिफ़ा लाइ गॾु बीठल आहे। यमनी होसियन जा सऊदी शहरनि ते हमला, 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। होसियन सऊदी शहर भा खुमैस, मुशीद, नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतुनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिबि होसियन जी शहरनि ते हमले जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो।

0: ईरान जंग नथो चाहे पर मुज़ामत तां पोइते बि न टंदो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त तेहरान सदाई जंग जो मुखालिफ़ रहियो आहे ऐं कॾहिं बि जारे नाहे रहियो। ईरान जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रही आहे, पंहिंजे मफ़ादनि जो दिफ़ा जारी रखियो वेंदो। सिंधी असेंबली में एम के एम जो ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिलण ते احتجاج स्पीकर ढाई साॾो नारेबाज़ी। احتجاج दौरान सिंध असेंबली वफ़ाक़ी हुकूमत खां पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कारे शाह जी सदारत हेठि शुरू थियो त अपोज़िशन लीडर अली ख़ुर्शीदी असेंबली मेंबर्स पारां ऐवान वारियूं वीडियोज़ सोशल मीडिया ते रखण वारो मामिलो थारियो। स्पीकर चयो त मेंबर्स जा नाला ॾियो, एम के एम मेंबर्स मामले ते احتجاج शुरू कयो। जाल सां नज़ार चयो त सिंध हुकूमत लेवी ख़तम नथी करे सघे, वफ़ाक खां लेवी ख़तम करण जो मुतालबो करे सघे थी। स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सितंबर ते लानियल احتجاج बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी, ॿुधणी लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो। अदालत चइनी सूबनि जे आईजीस एडवोकेट जनरल्स खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सितंबर ताईं मुलतवी कई वई।
1: मगर यहाँ पे बेटा था तो 3 बच्चे आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि अंकल हमें भूख लगती है, 3 बजे हम स्कूल जाती है, स्कूल से घर जाती है और 3 बजे हम पहुंचती है, 2:30 बजे तक स्कूल होता है, हम भूखी होती है, हम घर जाती है। ये टाइम आपने जो 1 घंटा पढ़ाया है, कम तक 2 महीने का बेटा हो गया। अच्छा चंचल जो है हरी कृपा सिंह फिलहाल जो है ये कलाक इन नंढड़ी की करे मिली है, न तो भूत अड़ा जबरदस्त उस्ताद ने ए आई ठाया जो मुझे मजो पे वो ऐसी समटाइम्स आउं देखे चंदो बेटा जो ही ए आई की वीडियो आए कि कुछ ना तुझी है मुझे अड़ो है।
0: सिंध जा स्कूल हाणे 2:30 बजे बदिरां 1:30 बजे बंदि थींदा। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह स्कूल जे वक़्त में 1 कलाक घटाए करे छॾियो। कराची में तकरीब का खिताब कंदे सरदार शाह चयो त ॿारनि पारां वधीक वक़्तु हुअण ऐं भुख लॻण जी शिकायत ते वक़्तु घटाइण जो फ़ैसिलो कयो। मोकल हाणे 2:30 बजे बदिरां 1:30 बजे थींदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 50 जदीद गाॾियूं इस्लामाबाद पुलिस हवाले करे छॾियूं। वज़ीर-ए-आज़म जदीद इलेक्ट्रिक गाॾियूं आईजी इस्लामाबाद हवाले कयूं। शहबाज शरीफ चयो त शहरीनि जे तहफ़ लाइ समूरा घुर्बल क़दम खया वञनि, ॾोहनि ते हर सूरत में ज़ाब्तो आंदो वञे। नेब एफआईए खां 3 सालनि जी करप्शन केसेस जा तफ़सील तलब करे वरिता। नेब एफआईए खां 2023 खां 2025 ताईं जो तफ़सीली रिकॉर्ड तलब कयो। नेब एफआईए खां ख़रीदारी ठीकनि माली इंतज़ाम ऐं सरकारी असासनि जे इंतज़ाम बाबति शिकायतनि जांच एफआईआर ऐं चालान जो रिकॉर्ड पेश करण जी हिदायत कई। सिंध जो विरागो थियण न ॾींदासीं, सिंध जी हिफ़ाज़त लाइ हर हद ताईं वेंदासीं। 9 सूबनि जो रींगट सिंध जे कुदरती वसीलनि ऐं मादनियात ते कब्ज़े लाइ कयो पियो वञे। टंडो ग़ुलाम हैदर में जलसे खे ख़िताब कंदे JUI अॻवान राशिद महमूद सुबरो चयो आहे त हुकमराननि जे क़दमनि ते नज़र आहे, सिंध जा चौकीदार आहियूं, सिंध टुटण न ॾींदासीं। मादनी वसीलनि सां मालामाल सिंध जो अवाम बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे, सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत या शकल में क़बूल नाहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहान संगीन इल्ज़ामनि हेठि मुअतल। एडिशनल कंट्रोलर इम्तियाज़ आगरानी खे मुअतल कयो वियो, जांच शुरू। कमीशन जे मेंबर विक्रम सिंह खे जांच आफिसर मुक़रर कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त इम्तियाज़ आगरानी ते संगीन इल्ज़ाम आहिनि। कराची में सिंध स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन जे मुलाज़मनि जो प्रेस क्लब वारो बेदी बि احتجاج जारी। मुलाज़मनि احتجاجी मुज़ाहिरो करण बाद अलामती भुख हड़ताल बि कई। मुलाज़मनि चयो त हुकूमत जाइज़ मसला हल करण लाइ तयार न आहे, जाइज़ मुतालबा तस्लीम कया वञनि। कराची यूनिवर्सिटी के इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन से हमलो सचल पुलिस से बिन शक की जवाबदार की गिरफ्तार करे वरतो जांच जारी है। मचारी वेझो घर की छित किरी पई एक जनो फोत बजख्मी खानोट में घर की छित किरण सबब निंड सुतल आशिक शेख फोत थो एक औरत बाड़ी जख्मी थी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 310509 0300 510 5109।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
8: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

जी जनाब, वेलकम बैक अमा बुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क आई अमा बुधो पिया पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम थी चुकी आहे ऐं अॼोके ॾींहं ते अवां जे लाइ असां गीत पिरोली सिलसिलो शुरू कंदा आहियूं। सो हाज़ुर आहे अवां जे पसंदि ते अवां जो ई हिकिड़ो अहिड़ो सिलसिलो जंहिंमें असां हिकिड़ो को गानो को ट्रैक ॾींदासीं, अवां खां पुछंदासीं उहो आवाज़ कंहिंजो आहे। अवां खे सिर्फ़ ॿुधाइणो त इहो आवाज़ कंहिंजो हूंदो। सो पाण उन खां पहिरीं जो ओॾां हलूं, तव्हांखे ॿुधायां त फ़क़ति हर सवाल में तव्हां हिकिड़ो दफ़ो कॉल कंदा। अॼु तव्हांखे इहो हूंदो, जीअं सवाल चेंज थींदो त असां वरी ॿिए माना असांखे हिन ॿिनि कलाकनि अंदरि केतिरा ई गाना पुछणा आहिनि हर गाने जे, ऐं जेको ख़तमु थियण जो हूंदो उहो इहो हूंदो त घटि में घटि चार दुरुस्त जवाब अची वञनि। असां वरी गानो चेंज करे नओं सवाल पुछंदासीं। त हाज़ुर आहे अॼोके शो जो पहिरियों सवाल, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? मोबाइल पंहिंजे हथ में खणो, टाइप करियो नंबर जंहिं ते तव्हां कॉल कंदा। जी हा, 0334-3525-786 4-3525-786 ते हिन सवाल जो जवाबु ॿुधाईंदा। वधीक का गुफ़्तगू न थींदी। तव्हांजो नालो पुछंदुसि, फनकार जो नालो पुछंदुसि, त पोइ ॿुधायो ही आवाज़ कंहिंजो आहे।

0: पहरी कॉल अची चुकी है, ॾिसंदा जी कंहिंजो आवाज़ आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। तव्हां अलाह जी बंदी था ॻाल्हायो, हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे? ठीकु आहे, तमामु घणी महिरबानी, भलीकार चवंदासीं ऐं तव्हांजी कोशिश लाइ तव्हांखे सलाम पेश कयूं था। अलाह साईं कंदो तव्हांजो जवाब सही ईंदो, सही अचे थो या ग़लति अचे थो थोरो इंतज़ार कजो, ठीकु आहे? थैंक यू वेरी मच, तव्हां कॉल कई, महिरबानी, थैंक यू। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब ऐं किथां खां? अच्छा, हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे? जी जी, इहो ई जेको हले पियो ॿुधो। पकी ॻाल्हि
1: आहे?
0: धुको त कोन पियाणो? चलो चलो, ठीकु आहे, कोशिशि कंदासीं, ॾिसंदासीं तव्हांजो जवाबु कीअं थो अचे। थैंक यू वेरी मच कुर्बान, ख़ासि कयली महिरबानी तव्हांजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां?
2: मोहम्मद सलीम अहमदाणी, लॻ साहिबनि दस्ती ॻोठ राज़ी खान अहमदाणी खां।
0: सलीम अहमदाणी साहब, हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे? अहमद मुगल जो। तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां कोशिश कई ऐं तव्हां पक समुझो था त अहमद जो आवाज़ वरी ॿुधो।
2: अहमद जो ई आवाज़ आहे?
0: पकी ॻाल्हि? अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। अवां कोशिश कई, लख थोरा, पर अवांखे एतिरो ॿुधायां त जवाब दुरुस्त न आहे, अञा कोशिश कयां। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे केरु आहे कॉल ते। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवर साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? लॻे थो न पक आहे या शक आहे? तव्हां कहिड़े ॻोठ खां नालो पंहिंजो ॿुधायो? महिरबानी रुस्तम पवर, थैंक यू, थैंक यू, महिरबानी, लख थोरा। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, साॻी माण्हू असलम तुदीअ जो आवाज़ आहे, मोहम्मद सलीम अमदाणी।
0: ॾिसो, डबल कॉल न आहे करणी साॻे सवाल में, इन जे करे पोइ उहो असांखे इहो असांजी पॉलिसीअ ख़िलाफ़ आहे। ओके जी, पर हाणे साॻे सवाल में डबल कॉल न कयो, जॾहिं ॿियो सवाल अचे तॾहिं ॿुधाइजो, पर इहो बि जवाबु तव्हांजो सही न आहे। थैंक यू वेरी मच मिठा माण्हू। ओके जनाब, हिकिड़ी नंढी रिक्वेस्ट आहे त साॻी सवाल में ॿ हर कॉल न कयो, उहो ॿिए जे हक़ ते नुक़सान हूंदो। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, पोइ मूंखे ब्रेक वठी तव्हांखे जवाबु ॾियणो, चओ दुरुस्त जवाब जाम अची विया आहिनि। जी हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां? सालेपट खां। ज़वार मोहम्मद बचल शंभाणी साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? पकी ॻाल्हि
4: आहे?
0: भला बिल्कुलु जवाबु तव्हांजो लॉक करियो न करियो? पकी ॻाल्हि आहे? ॾिसो, धुको त कोन्हे न? थैंक यू वेरी मच, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां सवाल जो जवाब ॾिनो, ॾिसंदासीं थोरी देरि वेट कजो, तव्हांखे जवाब ॿुधाईंदासीं, ठीकु
4: आहे?
0: महिरबानी, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, साईं यूनुस साहब कहिड़ा हाल आहे?
0: साईं अलहमदुलिल्लाह, केरु साहब पिया ॻाल्हाइनि?
5: सर गुलाम मुस्तफा बलोच थो ॻाल्हायां, मिठो ख़ासि
0: खां। बलोच साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? अलहमदुल्ला। गुलाम मुर्तज़ा साहब, सवाल असां पुछो, हिकिड़ो आवाज़ प्ले कयो आहे, तव्हां ख़बर आहे आवाज़ कंहिंजो आहे?
5: सर जेको पहिरियों तव्हां जेको सॉन्ग प्ले कयो, रहमान मुगल जो आहे।
0: इहो रहमान मुगल जो तव्हां लिखियो आहे? अच्छा, महिरबानी, तव्हांजी कोशिश खे सलाम पेश था कयूं, पर एतिरो ज़रूरु चवंदुसि, अञा कोशिश कजो, छो त ही रहमान मुगल जो आवाज़ न आहे। थैंक यू वेरी मच साईं। जी जनाब, मां हिकिड़ी कॉल अटेंड करे पोइ तव्हां वधां पियो ब्रेक ॾांहुं। हलो अस्सलाम वालेकुम। केर साहब ऐं किथां खां?
6: गुलाम अहमद जान।
0: जी, ही आवाज़ कंहिंजो आहे, सुञातो आहे तव्हां?
6: सागर सिंधी जो आहे।
0: अच्छा, कोशिश पकी कई अथव या न, ॿियनि जो ॿुधी जवाबु पिया ॾियो? अच्छा, ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लख थोरा अव्हांजा। ओके जनाब, त पोइ असां हाणे वठूं पिया हिकिड़ो ब्रेक, फौजी सुमर जो ट्रैक तव्हांखे ॿुधाए अची ॿुधाईंदासीं, तव्हां आवाज़ खे सुञातो आहे या न, ऐं पहिरियां चार दुरुस्त जवाब कंहिंजा हुआ, ऐं जेके जेके महिरबानी दुरुस्त जवाब मोकिलींदा उन्हनि जा असां हिकु ॿ टे ऐं चार नंबर ॿुधाईंदासीं। ओके जी, फिलहाल फौजिया सुमर जो आवाज़ हनीफ मेमुने की शायरी है अचो तक जी बुधऊँ एक दर्द जदा एक अड़ो आवाज़ जैमें दिल चिकारी

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद सवाल पुछो सी त ही आवाज कंहिंजो आहे अवां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे शो आहे सिंधड़ी जी शाम मेज़बान अवां जो आर जे यूनिस बकारी मोहबतूं अवां जे नाम असां पुछियोसीं ही आवाज़ कंहिंजो आहे जंहिंजे लाइ तव्हां खोड़ सारनि महिरबानी कॉलूं कयूं पर तमामु ख़ुशी थी त हिन में तमामु घणा दुरुस्त जवाब अची चुका पहिरीं ॿुधायूं त जवाब जेको तव्हां ॾिनो उहो आहे ही आवाज़ आहे सागर सिंधी जो जिन जिन महिरबानी अहमद मुगल सरमन सिंधी ऐं मुख़्तलिफ़ आवाज़नि सां मैच थींदड़ आवाज़ हुजण जे करे माना ॿुधायो उन्हनि जी कोशिश खे सलाम था पेश कयूं इन में को बि मसइलो कोन्हे हीअ हिकड़ी पंहिंजी म्यूज़िकल गेम आहे हिनखे केर बि दिलि ते न वठंदो कोशिशि कंदासीं पाण त दुरुस्त जवाब ईंदा त उहो असीं जेको दुरुस्त हूंदो उनखे अनाउंस न आहियूं कंदा ऐं जेको दुरुस्त न हूंदो उनखे चवंदासीं कोशिशि करे ठीकु आहे त पोइ असांखे ॿुधायूं त पहिरियां चार जेके दुरुस्त कॉल्स आहियूं उन्हनि में पहिरियों नंबर कॉल आई हुई अलाह जी बंदी जी ॿियो नंबर दुरुस्त काल आई कुर्बान अली ख़ासकेली जो टियो दुरुस्त जवाब आयो रुस्तम पंवर साहब ऐं चोथों दुरुस्त जवाब आयो ज़वार मोहम्मद बचल शंभाणी साहब इन खां सवाइ खोड़ सारा दुरुस्त जवाब आया ऐं अञा बि कॉलूं अचनि पियूं कॉल्स महिरबानी करे तॾहिं कयो जॾहिं असां क्वेश्चन पुछूं था सवाल पुछूं था तंहिं करे नओं सवाल पुछी था वठूं पर इन जी कॉल कंदो ब्रेक खां पोइ फ़िलहाल कॉल न कजो पहिरीं में गौर कजो त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे हाज़ुर आहे ॿियो सवाल ही आवाज़ कंहिंजो आहे

ॿुधाइणो आहे त ही आवाज़ कंहिंजो आहे, नंबर हूंदो 0334352578 पर हुन ते कॉल कंदासीं टीह वारे ब्रेक खां पोइ, यानी 5:30 जो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं तव्हांजो कॉल्स वठणु शुरू कंदासीं। फ़िलहाल कॉल नथा वठूं छो त कमर्शियल ब्रेक ऐं टाइम चेक हूंदो आहे, मजबूरी आहे त असां टाइम चेक ऐं ब्रेक खे टाइम ते ऑन एयर कयूं। ही सवाल आहे, हिनखे ॿुधंदा था हलजो ऐं यादि कजो, सर्च करे वठो त ही आवाज़ कंहिंजो आहे, ॿुधी वठो गौर सां। मां ब्रेक में वञा पियो, थोरी देरि में वापसि अची बाक़ी तव्हांजो कॉल वठंदसि ऐं ॿुधंदासीं पुछंदासीं त ही आवाज़ कंहिंजो आहे। पहिरीं ॿुधी वठो गौर सां।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 शाम 5 बजे तीन मरीज।

मुर्क सुमरो जो आवाज़ है तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो अलाह जी बंदी तव्हां चयो मुर्क सुमरो जो आवाज़ आहे ऐं मुर्क सुमरो साहिबा जो ही आवाज़ जी न थोरो अॼु तव्हांजो जवाबु दुरुस्त कोन्हे तव्हां पहिरियों के सवाल जो विनर हुआ पर हाणे कोशिशि कजो तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी तव्हां कॉल कई तव्हांजी कोशिश ते असीं तव्हांखे सलाम पेश कयूं था थैंक यू वेरी मच अलाह जी बंदी ॿी कॉल नए सवाल ते वरी वठंदासीं ओके थैंक यू जी मज़ीस ख़ातिर नज़रात आवाज़ सुञाणो आहे ॿुधायो हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: साईं वालेकुम सलाम।
0: साईं ही आवाज कहीं जो है
1: अदा माखे नहीं तो लगे ता अदम तारफ कराया साईं
0: तहां पई जो तारफ करायो भली
1: साईं मां केटी शादी लिखा वफा अब्दुल वहीद जतोई ताल को जिलो सखरा भा बकर साहब
0: मेहरबानी साईं पई जो नालो छा बुधायो वरी रिपीट करे वठो
1: साईं वफा वफा अब्दुल वहीद जतोई
0: वफा अब्दुल वहीद जतोई साहब ही आवाज कहीं जो है
1: अदा हाँ ता हाने हले तो बिल्कुल मां ता चा तो फरजाना जे फरजाना ना है तो पोदान गोलियो था
0: कोशिश करियो फरजाना जी आवाज को नहीं पर तमा जी कॉल आई डाडी खुशी थी
1: बड़ी मेहरबानी
0: मेहरबानी लख थोरा जी जनाब दिसदासी हाणी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
2: ईसाई तला रहा शहजाद डंगणू
0: शहजाद डंगणू साहब बुधायो ही आवाज केंजो है खबर आए ही आवाज केंजो है
2: दीपक कंवल
0: तो था चो अच्छा दीपक कंवल जो आवाज कौन है शहजाद साहब तहां कॉल कई है तानी मेहरबानी अने अब कोशिश जारी रख जो ओके जनाब डिस्कासी हाणी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम साईं मोहम्मद सलीम अहमदानी
0: जी मोहम्मद सलीम अहमदानी साहब ही आवाज केंजो है
3: ही आवाज मुझे समझ में अचे पे हो मेरा जमा
0: मोहम्मद सलीम अहमदानी साहब तहां असा के कंटिन्यू ज्वाइन कंदा आयो तहां के वेलकम था चऊ आई जेकरे तहां जो जवाब दिसंदासी असा जी रिजल्ट शीट मुरतब थिए पई आई मोहम्मद सलीम अहमदानी साहब थैंक यू वेरी मच भली कार
3: ठीक ठीक ओके
0: थैंक यू दिसनासी हाणी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केर पिया गलाइन सबा खुशबू लगारी जो आवाज आहे तांजी कोशिश जी मेहरबानी पर खुशबू जो आवाज कोने थैंक यू सबा वेलकम ओके जी सबा जी कोशिश के सलाम भेजता के सुधा कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: जी वालेकुम सलाम सर आवाज केंजो है ता पूछा गई है
0: हां पूछा या कही तुम गलती थी वही तुम बुधायो केंजो आवाज आए मुकेश वेलकम था चौ मीरपुर खास या मिठा मानू भली कार मुकेश मुकेश कुमार तमा शायद शो में पहरी दफा शामिल थे आयो तांके पहरी भली कार चई वेठो थैंक यू मुकेश जवाब तांके बुधाईंदासी ओसीड़ो कजो ठीक आ त पहरी दफो कॉल कई है अखियन सा भली कार मेहरबानी थैंक यू वेरी मच ॾाढा सुठा लिसनर्स सभई तव्हां भेनरूं भाइर ॾाढा सुठा आहियो छाकाणि जो काफ़ी खिल भोग तव्हां सां करणी पवंदी आहे तव्हां नाराज़ कोन थींदा आहियो वॾी ॻाल्हि इहा नाराज़ कोन था थियो न बसि ॿियो मूंखे छा घुर्जे मूंखे इहो ई त कावड़ न कजो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी कॉल ड्रॉप थी वई शायदि कॉल ड्रॉप थी वई आहे पर असां पुछियो आहे हीअ आवाज़ कंहिंजो आहे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम
5: वालेकुम
0: आजिज़ अला बचायो नवाणी साहब ही आवाज़ कंहिंजो
5: आहे
0: आजिज़ अला बचायो नवाणी साहब वेलकम था चऊं शाहपुर दरपुर खां तव्हां असांखे यादि कयो आहे मोहबतूं वॾा वॾ वेलकम था चऊं जवाब जो इंतज़ार कजो तबियत सफ़ा बिल्कुलु ठीकु ठाकु

0: रशाश बशाश है, मस्तियन में आयो।
1: ओके जी रिपोर्ट है।
0: ओके जी रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके जी रिपोर्ट। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन आमीन। मेहरबानी लगे थोड़ा डिसंदासी त हाणी कॉल के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। केर साहब है किथा गा? रुस्तम अली पावर। ही आवाज कें जो है जो सवाल पूछो हो सी?
1: यो हमेरा चना जो आवाज आ।
0: हां, ताजी कोशिश ला मेहरबानी, ताजो इंतजार कजो छ तो मुके गानो प्ले करनो। गानो अची वियो है, फिलहाल आ के शमन मीराली यो ट्रैक बुधराय तो जवाब बुधाई। ठीक है,
1: ठीक है, कुर्बान।
0: थैंक यू बली कर। दिसनासी कॉल ते के रहलो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब है किथा का? अर्शद मरी साहब, असो सवाल पूछो हो सी, आवाज प्ले कयो सी, अवां के खबर है वो आवाज के जो काला जोड़ा पा?
1: जी सर, तकरीबन उमेरा चलायो थी सके तो
0: तकरीबन थिए तो ताजो मेहरबानी। पहली गल तो तमा पहरो दफो इन शो में शामिल थे आयो, अवां जा वडा वड, अवां जी मोहब्बत, अवां जा किरोड़े कुर्ब, अखियन सा भली कर।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: मेहरबानी मेहरबानी। दिसनासी कॉल थी के रहलो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई।
0: साईं केर साहब है किथा का? नज़ीर अहमद मंगरे साहब के वेलकम भलीकार चवंदासी। असा एकड़ो सवाल पुछो सी, ये एकड़ो आवाज हलियो पे काला जोड़ा पा, मेरी फरमाइश ते के जो आवाज हो?
1: यो साईं आवाज मशहूर फनकारा हुमेरा चना।
0: हुमेरा चना पक्की गाला?
1: पक्की पक्की, बिल्कुल पक्की गाला।
0: न धुको तो कोन हुंदो न सर? सेव करूं था, मां रिजल्ट सेव करने की कोशिश कयां तो, पोजिशंस अनाउंस कंदस, जवाब छा हुंदो? पेरी शमन मीराली इन खुशी में बुधी वठो, छो तो मुके सवाल भी चेंज करणो है। तो पो मौजूद खवातीन हज़रात के ॾिना वंजो, प्रोग्राम है जारी हो सारी, नंढड़े ब्रेक का पो वापिस इंदो अवां जो यूनुस बकारी, शमन मीराली आवाज़ बुधंदे कमर्शियल ब्रेक न वधंदासीं।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

दर्शक अवां के बलिकार चाहूं था अवां बुधो पे GFM 88 रेडियो नेटवर्क के जे GFM सखर GFM लाड़काणू GFM मोरो GFM मेरापुर GFM मीरपुर खास GFM सकरंड GFM मटियारी GFM मातली शो आहे सिंधड़ी जी शाम ए सिंधड़ी जी शाम में अवां जे शो में अवां जे मेज़बान आहे यूनिस बकारी आवाज जी दुनिया जा जो का सवाल सिलसिले जो नालो है गीत पिरोली असा पुछोसी ही आवाज कहजो आहे

हिन जो पहिरियों दुरुस्त जवाब मातली खां सजाद काज़ी साहब जो। सजाद काज़ी साहब तव्हां लिखियो त हिन जो जवाब आहे हुमेरा चना। बिल्कुलु तव्हां सही चयो, ही आवाज़ आहे हुमेरा चना जो। ॿियो दुरुस्त जवाब आयो मोहम्मद सलीम अहमदाणी साहब जो। ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांजी कोशिश खे बि सलाम पेश कंदासीं। तव्हांजो आयो दुरुस्त जवाब। थैंक यू, भलीकार ऐं मुबारकूं। टियों दुरुस्त जवाब आयो मुकेश कुमार जो। ऐं मुकेश कुमार साहब वेलकम चवंदासीं तव्हांखे, तव्हांजो दुरुस्त जवाब हुयो। ऐं चोथो जवाब आजिज़ अलहब चयो नुहाणी साहब जो। थैंक यू भलीकार, तव्हां सभिनी खे मुबारकूं। ऐं अवां सभिनी जा वॾा वर्ड अवां असांखे सही जवाब ॾिनो। ॿिया बि खोड़ सारा दुरुस्त जवाब हुआ, पर छाकाणि इन नंबरिंग पोइ ते अची वई। पहिरियां चार दुरुस्त जवाब असां अनाउंस कया, बाक़ी हर माण्हू पंहिंजो नालो पंहिंजो तारुफ़ करायो। थैंक यू भलीकार चवंदासीं। मुआज़िज़ ख़वातीन हज़रात, टियों सवाल पुछी वठो। त पोइ हाज़िर आहे गीत पिरोली जो टियों सवाल। ही आवाज़ कंहिंजो आहे? पहिरीं आवाज़ ॿुधी वठो, पोइ कॉल कजो। काफ़ी महिरबानी, विच में कॉलूं कंदा पिया आहिनि, इन जे करे आवाज़ चेंज थिए थो, तव्हांखे ख़बर न पवंदी, विनर न थी सघंदा। इन करे पहिरीं कॉल खां पहिरीं आवाज़ ॿुधो ॿुधो ऐं नंबर डायल कजो 0334352578 ते ॿुधायो ही आवाज़ कंहिंजो आहे।

0: तुझे कूड़न कूड़न वायदंते इतबार कयम ही आवाज कहजो आहे
1: छो प्यार कयम तुझे कूड़न कूड़न वायदंते
0: बुधायणो आहे त हिन फनकार जो नालो छा आहे जल्दी जल्दी सा डायल करियो 0334352578 ते अवां जो इंतजार आहे पहिरीं कॉल कंहिंजी थी अचे ॾिसी था वठूं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब ऐं किथां खां सखर मां शायर अली मोहम्मद मीराणी साईं असां अॼु आवाज़ पुछियो आहे हीअ आवाज़ कंहिंजो आहे तव्हां ख़बर आहे हीअ आवाज़ कंहिंजो
2: आहे
0: मंज़ूर सखीराणी तव्हां चयो आहे तव्हांखे पहिरीं त वेलकम था चऊं भलीकार महिरबानी मोहबतूं कोशिश कंदासीं तव्हांजो जेको दुरुस्त जवाब जे इंतज़ार में हूंदासीं पर हीउ मंज़ूर साहिब जी आवाज़ कोन्हे अञा थोरी कोशिश कजो ठीकु आहे साईं महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब आहीं किथां खां तलार का डंगणा साहब हुसैन डंगणो ॿुधायो तव्हां ही आवाज़ कंहिंजो आहे नवी डंगणे जो न कानो कंहिंजो
2: आहे
0: हाणे ॾिसो ही वरी शबीर अली डंगणो बीठो आहे पर तव्हां खां असां हिकिड़ो सवाल पुछियो रेडियो ॿुधी कॉल करियो दोस्तो ईअं नथो थिए त तव्हां इहो ॿिए खां ॿुधी कॉल न करियो प्लीज़ रेडियो ॿुधी कॉल करियो छो त अॼु हले पियो एॾो वॾो सख़्तु मुक़ाबिलो उन ॿुधाइणो आहे त इहो आवाज़ कंहिंजो आहे हाणे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज़ अचे पियो हलो अस्सलाम वालेकुम ओके ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां
2: अची
0: ॿुधो ॿुधो को बि हिकिड़ो नालो ॿुधाईंदो हिकिड़ो को बि नालो धुको न लॻंदो न या वारो जवाबु कोन ॾींदासीं को बि हिकिड़ो ॿुधायो नजफ अली थैंक यू वेरी मच मां तव्हांखे वेलकम चवां थो भलीकार चवां थो ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां असांखे कॉल कई महिरबानी मोहबतूं मिठा माण्हू भलीकार अञा बि कोशिशि कजो छो त ही नजफ अली आवाज़ कोन्हे थैंक यू आवाज़ ई दुनिया जो सवाल ही आवाज़ कंहिंजो आहे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम अदा गोद बाबू वेरो थरपारकर खान दिलीप कुमार मेघवाड़ गलाए भी आवाज़ तुफ़ैल संजराणी जो
0: तुफ़ैल संजराणी जो अच्छा थैंक यू कोशिश करण लाइ महिरबानी दिलीप कुमार तव्हांजी कोशिश खे सलाम था पेश कयूं पर ही आवाज़ तुफ़ैल साहब जो न आहे अञा कोशिश कजो ठीकु आहे हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केर साहब ऐं किथां खां
2: रोड़ी सखरा नज़ीर अहमद मंगरी
0: नज़ीर अहमद मंगरी साहब ही आवाज़ कंहिंजो
2: आहे
0: आसिफ सियाल जो तव्हां लिखियो आहे अच्छा जी तव्हां कोशिश ॾाढी ज़बरदस्त पिया करियो तव्हांखे वेलकम था चऊं भलीकार महिरबानी मोहबतूं अञा बि थोरी कोशिश जारी कजो छो त ही आसिफ सियाल साहब जो आवाज़ कोन्हे थैंक यू सर थैंक यू मौज़ूस ख़ातिर नज़र आहे त असां जेको सवाल पुछूं था हुनखे थोरो गौर सां ॿुधो पहिरीं ॿुधी वठो ही आवाज़ कंहिंजो आहे

0: जो है डिसूजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मोहम्मद सलीम अमदानी।
0: मोहम्मद सलीम, ये आवाज कें जो है?
1: अदा ये आवाज है आसिफ सियाल जो।
0: आसिफ सियाल साहब जो आई न ठीक है। थैंक यू वेरी मच ता कॉल के ये पर अन्य थोड़ी कोशिश जारी रख जो। थैंक यू, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं वालेकुम सलाम।
0: साईं पहिरीं जेको रेडियो वॼे पियो हुनखे परे करियो, रेडियो खे परे करियो।
2: बिल्कुलु बिल्कुलु परे थियो।
0: केरु सां पिया ॻाल्हायो?
2: साईं वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई, केटी शाबिलो तालको ज़िलो सखरा बहादुर।
0: वफ़ा अब्दुरहीम जतोई चयो?
2: न साईं, वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई।
0: अब्दुल वहीद जतोई। जतोई साहब, हीअ आवाज़ कंहिंजो आहे? तव्हां नजब अली चयो पिया। ख़ैर, कोशिश कयो पिया छो त असुल में असां अहिड़ा आवाज़ प्ले पिया कयूं जेके टे चार फनकारनि जा हिकु जहिड़ा आवाज़ हुजनि या अॻे ॻायल हुजनि। इन जे करे थोरो असीं मुझाईंदासीं थोरो, ठीक आहे? जतई साहब वेलकम, वेलकम भलीकार लख थोरा। ओके जी, ॾिसंदासीं त हाणे कॉल बि केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां? हा ठीकु आहे, धुको अखियुनि ते आहे। ॿुधायो, आवाज़ कंहिंजो आहे?
3: शाहिद बबर जो।
0: शाहिद बबर जो, कोशिश ज़बरदस्त कई आहे। तव्हां वेलकम था चऊं तव्हांखे, पर ही आवाज़ शाहिद बबर साहिब जो कोन्हे। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू लख थोरा तव्हांजा। मौसिस ख़ातिर ज़रूरत मूंखे हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक वठिणो आहे, ऐं शॉर्ट ब्रेक में ॿुधायूं पिया हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रेक, ऐं ट्रेक ॿुधंदे पाण हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं। वापसि ईंदासीं। मुक़ाबिलो अॼु सख़्तु आहे छो त हेसी ताईं मुंहिंजे हिसाब सां को बि धोको न आहे लॻो, यानी हिन फनकार खे अञा ताईं कंहिं बि न आहे सुञातो। कोशिशि करियो, थी सघे थो तव्हां सुञाणी वठो, पर तव्हांखे इलाही सारो टाइम ॾियां थो न्यूज़ ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अची ॿुधाईंदुसि। फ़िलहाल जलाल चांडियो साहिब मूंखे चवे थो, मिठा मेरी हयाती बचा, मिठा में मरंदा पिया। मिठा मेरी हयाती बचा, मिठा में मरंदा पिया। एसी ताईं केर बि कॉल न करे, इंतज़ार कजो छो त मूंखे न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वरी साॻियो सवाल पुछणो आहे। एसी ताईं को बि दोस्त, महिरबानी, भेनर, भाउ इन सवाल जो जवाबु अञा ताईं न ॾेई सघिया आहिनि। सर्च कयो, ॻोल्हियो, थी सघे थो आवाज़ सुञाणी वठो, ऐं जेकॾहिं सुञाणी वठंदा त वाह वाह थींदी, जेकॾहिं न त मां तव्हांखे जवाबु ॾियण लाइ आहियां बिल्कुलु रेडी। त पोइ हिन गाने खे ॿुधंदे न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अची पूरो कलाक तव्हां सां ॻाल्हियूं कबियूं। फ़िलहाल स्टे विद अस, पाण असां सां गॾु रहिजो छो त हीउ आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। प्रोग्राम शो जेको आहे उहो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। ऐं मुंहिंजो RJ आहे यूनिस बकारी, जेको बिना ब्रेक वापसि ईंदो।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: चार सन चार चौ त सिंध हुकूमत ले भी खत्म नथी करे सके वफाक खा ले भी खत्म करण जो मुतालबो करे सके थी स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾियो. कराची जे वापारी मीर ज़ाकिर जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वज़ीर जल सनजार खे खमीस से तलब करे वरितो. कमीशन जी कार्रवाई दौरान एडवोकेट जनरल जे रवैये ते बि अफ़सोस ऐं हैरत जो इज़हार. अदालती कमीशन मीर रज़ा केस जे जोकी कार्रवाई जो लिखत में हुकुम जारी करे छॾियो. अदालती कमीशन चयो आहे त एडवोकेट जनरल पारां अदालती कमीशन जी कार्रवाई में रंडक वंडण अफ़सोसनाक आहे. सिंधी आला तरीन कानूनी आफिसर पारां उथारियल एतराज़ बि हैरान कंदड़ आहिनि. कंहिं सवाल जो कार्रवाई जो हुजण या न हुअण कमीशन जो अख़्तियार आहे. कमीशन जो मक़सद बि केस बाबति हक़ीक़तूं अवाम साम्हूं आणण आहे. चाल सनजार खमीस ते कमीशन अॾो पेश थियो आहे. सिंध हाई कोर्ट फहमीदा पिताफी केस में आई जी सिंध खे शोकाज नोटिस जारी करे छॾियो. आई जी सिंध घरू सेक्रेटरी डी आई जी सखर एस एस पी घोटकी ऐं जांच आफिसर खे 21 सेप्टेम्बर ते ज़ाती तौर पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो. अदालत नारी फहमीदा पिताफी खे सरदार अब्दुल बारी पिताफी हवाले करण बाबति बि एहतजाज जो हुकुम ॾेई छॾियो. फहमीदा जी बाज़ियाबी ऑपरेशन जी निगरानी आई जी हवाले. डी आई जी सखर ऐं एस एस पी कोटकी खे आई जी सिंध जी निगरानी में कम करण जो हुकुम. जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जी अदालत लिखत में ऑर्डर जारी करे छॾियो. अदालत चयो त जेकॾहिं को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुजे त कानून मूजिब कार्रवाई कई वञे.

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ
4: 0302-01-8003।
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
5: न अदा
1: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-328-36।
7: मेरापुर की सुनते रहो जी FM 94।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अमां सभिनी खे खुश आमदी चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहब ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम आहे, डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटरा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, वधीक इंतज़ार नथा करियूं कॉलर्स खे। अस्सलाम वालेकुम। जी दादा, कहिड़े किथां खां?

0: आहे ॾाढो, गाॾी स्टार्ट कयां थो त पोइ माना वेलण मुछड़ियो वञे ऐं गोॾे में सूर आहे ॾाढो। जेकॾहिं महीनो खनि नथो हलायां गाॾी त पोइ सूर ख़तम थी थो अचे।
1: अच्छा,
0: हिन मसइले में को डॉक्टर साहब मशवरो ॾिए त बहितर थींदो।
1: हा बिल्कुलु, तव्हां क़रीब आहियो, अगरि रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितरु आहे, वरना डॉक्टर साहिबु मूंखे ॿुधायो त रेडियो ॿुधो। जी सर,
2: अॼु असीं बिल्कुलु देखे इहे चवंदासीं त हिकु त जेको आहे सो कोशिशि कयो त जेकॾहिं कंहिंजे टंग में तकलीफ़ आहे त उन ते वज़न घणो या औकड़ू घणो जेको आहे सम्झो, या हिकिड़ी सट पाइण सां मूंखे तकलीफ़ थिए थी त उनखे कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो यानी आराम वारे तरीक़े सां जेको आहे सो तव्हां उनखे हैंडल करे सघो था। ऐं उनखां पोइ तेल सरिहं जो गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो उनखे लॻाइण सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे, काफ़ी असरअंदाज़ थींदो आहे। ज़ैतून जो तेल बि उनखे काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो ॾेई सघे थो। राति जे टाइम में तेल सरिहं जो या ॾींहं जे टाइम में बि तव्हां लॻाए सघो था। ऐं उनखां अलावा राति जे टाइम में खीर काढ़े ऐं उन में बि जेको आहे सो हेड विझी थोरी ऐं उहो पी सघो था, उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। वरना जो तव्हां एक्सरे कराए ऐं रूबरू ॾेखारींदव त उनमें बि ख़बर पइजी वेंदी त छा मसइलो आहे, त उनजे हवाले सां बि ट्रीटमेंट करे सघिजे थी। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहबु, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8051। हलंदासीं हिकु ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम।
0: हलो
1: जी, अदा केरु ऐं किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां? डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो, लेकिन रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर थींदो। ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो। जी सर,
2: जेसीं बिल्कुलु ही अहिड़ी क़िस्म जी तकलीफ़ हूंदी, हिकु आम तकलीफ़ नाहे, का उल्टी या बुखार या नज़लो हुजे जो तव्हांखे फ़िलहालु को आरज़ी टोटको ॿुधाइजे या मथे जो सूरु हुजे। हीअ पिते में पथरी आहे, ज़ाहिर आहे त उनजो हल थींदो ऐं हूअ मेडिकल में उनजो हल ऑपरेशन आहे। असां वटि इन जी हल जेको आहे सो ट्रीटमेंट ई आहे, दवाई आहे। सो बि को हिकिड़े वेले जे हिसाब सां दवा न हूंदी आहे, तक़रीबन 3 महीना 4 महीना दवा खाइबी आहे। सो बि पेशंट जो अल्ट्रासाउंड थियलु हूंदो, उनखे रूबरू ॾिसी करे त उनमें ॾिसिबो त उनखे केतिरी MM जी पथरी आहे, पोइ उन हिसाब सां पिते जी छा पोज़ीशन आहे, उनजा वाल्स जी छा पोज़ीशन आहे, पोइ जेको आहे सो ऐं पेशंट जी कंडीशन छा आहे, उनखे ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, या रत जी कमी आहे, या माथे जी तकलीफ़ आहे, या फैटी लिवर आहे, या ॿिया का तकलीफ़ आहे, त पोइ जेको आहे सो उनखे उन हिसाब सां तकलीफ़ रहंदी आहे। इहे हिते तव्हां उनखे यानी नसपंद वारी बीमारी न सम्झो, हीअ हिकिड़ी तकलीफ़ आहे जंहिंजी मुकमल ट्रीटमेंट थींदी त अलाह कंदो बग़ैर ऑपरेशन जे तव्हांजे पिते जी पथरी निकिरी वेंदी, पर इलाज सां। ठीकु आहे दादा, सो तव्हां सुभाणे रूबरू पेशंट खे वठी अची ऐं अल्ट्रासाउंड बि खणी ॾेखारे वञो। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असां शामिलु थी सघो था। इन लाइ लाइव कॉल नंबर आहे 0301-96-8051, 0301-216-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछरु आचार ऐं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: डॉक्टर साहब हर बार खमीस जुमे छंछर आचार्य सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटली रोड मरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा है। असान प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असान लाइव कॉल जो नंबर है 0301-96-8051 जी। सर ये सर चेकअप फीस होंगी है टे ढी या सर अवज कंपनी बर्दाश्त कर दिया या
1: जी सर बिल्कुल बुदाए चेक फीस फ्री जो दर हों जर्मन होम्योपैथिक तरफा जो है सो पेशेंट्स के लिए खास रिलीफ हों जो अस मरीजन के पे हिसाब से दींदा अच्छा इन प्रोग्राम के तौर असा पेशेंट्स जी हों उनके होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल जो तरीको जो उनके बार बार समझाइंदा बुधंदा बुधाइंदा भी आयो पर खास करके के पेशेंट्स ये हों के सही तरीके से दवा के इस्तेमाल न कंदा या उन्हें जो तरीक़ेकार जो खबर मरीजन के न हों जैसे करे भी पो या दवा उनके जो है सो उन मरीजन के यानी दवा असर न कंदी है जैसे इस्तेमाल तरीको सही न हों यानी एक गाल असा जी सही कॉल
0: सर कॉल पे से तवाजे मुझे कंटिन्यू करना से लेकिन इनका पहले की कॉल आए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: केरे किथा खादा
2: सही नजम अली खासी ने गाला रो शाह अल्लाह खारो थौ
0: छा पूछन चाहिदा डॉक्टर साहब का
2: सर असा जी मामी आए उने के जो आवाज मना चंदा मुतर करी वना के मल के पानी आवाज इलाज डाडा कराए तो पर समझ न छी।
0: अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब मां के बताए थोड़ी डियो बता। जी सर
1: जी सही बिल्कुल या भी माखे खोड़ सारा मसाइल हों कन जहाँ मसाइल हों दिमाग की कमजोरी होंगी है ब्लड प्रेशर हों उनके कर भी सो इन अदे के भी यही चवस माखे रूबरू डेखारे वन तो वो बेहतर रो ऐसी कर दवा जो वेंदी इनशा तला अड़े किस्म जो खोड़ सारा केसिस अलहमदिल्ला वह सही थी वह मेहरबानी हलूँ ते मौजू की तरफ तो मैं गाल पे कई तो पेशेंट्स घना जो है सो दवा के यूटिलाइज जो सो सही न कह यानी एक तो जो है सो फिर असि दवा के फ्रिज में ना रखो हों उन इन दवा के जो है सो जो मकदार क्वांटिटी बुधाई वेंदी है यानी अध कप पानी में जो सो 10 फुड़ा तो ओतरा ही फुड़ा 10 फुड़ा ही विधा वा अध कप पानी में ही विधा वन घा अध गिलास में विझा तो जाहिर है तो वह दवा असरात एतरो न कंदी आए या सिर्फ थोड़े पानी में जैसे घना वे ये होंगे जो अनलिमिटेड दवा विझी छा बुधाई से 10 फुड़ा उन विझी छा 40 फुड़ा तो उनसा उनके जी ये मैं गाल कई तो दवा जो को साइड इफेक्ट न या को नुकसान न हों पर मिसयूज करण सा दवा जो है सो जाहिर है तो यानी ओवरडोज वाले तरीके से जैसे केर इस्तेमाल दवा कह तो उनके इस्तेमाल कह तो उनके जाहिर है जो है नुकसान थी सो इन करो तरीको है डोजेज है वो उन हिसाब से सो यानी जो बुधा वे पानी हमेशा मां बुधाइंदो आया तो दवा जो रूल है तो सजर पानी में नलके जो पानी हुए ताज़ो या मोटर जो पानी हुए उनमें बर्फ़ के पानी में दवा पवण से बेअसर थी वेंदी है यानी वो पांजो असर न कंदी है जैसे के बल्कि मां खोड़ सारा अड़ा पेशेंट इंदा या अस पुछंदा मरीजन का ये समझो तो 30% पेशेंट अस अड़ा जो ये इं दवा के मिसयूज कन था जैसे कर मरीज के फर्क न पवन है घा जो सो खोड़ सारा बया भी जो है सो तरीक़ेकार मिसलन खाधे पीते का हमेशा अस मत दवा चवंदा घा जो सो नेराने दवा इस्तेमाल कह या जो है सो यकदम जो है सो वो मत स्मोकिंग कहें कदें भी होम्योपैथिक दवा जैसे केर इस्तेमाल करे तो यकदम उनके सिगरेट नोशी ना करनी तकरीबन 15-20 मिंटन तई जैसे केर सिगरेट पिए तो जल्दी पी जो सो उन जल्दी दवा ना पीणी या सिगरेट पी जल्दी दवा ना पीणी या दवा पी जल्दी सिगरेट ना पीणो तो ये नंढियों नंढियों गाल हों जे मरीज के असा उत रूबरू वेही कर समझाए पे दवा दींदा उनके बावजूद भी जो है सो मरीज गलती करे ऑनएयर प्रोग्राम से अवं सभी बुधन के कंखा भी दवा वो था पर दवा जो तरीक़ेकार इस्तेमाल इो ही होंगे तरह के दवा इन तरीके से इस्तेमाल कर घुर्जे हमेशा दवा पी चंगी तरह ढकड़ो बंद करण खपे। बी गाल त कड़ी भी चाहे मेडिकल जी टेबलेट हुए या चाहे होम्योपैथिक जी टेबलेट हुए उन कदें भी हथ से लाए वात में न विझंदा क्यों जो हथ में घणा जरासीम हुंदा आहिनि उहा डायरेक्टली तव्हां पते मां या डबी मां ज़बान ते रखी ऐं पाणी पी सघो था या ढकणे ते लाहे करे गोरी ऐं ज़बान ते रखी त इहो हिकिड़ो यानी तव्हांखे असां सिस्टम्स तरीक़ो ॿुधायोसीं जंहिंसां तव्हांखे जेको आहे सो को नुक़सानु कोन थींदो ऐं वणंदो जेको आहे सो फ़ाइदो थी सघे थो। ऐं हमेशह दवा जॾहिं बि कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां किथां बि वठो त उन एक्सपायरी ज़रूरु जेको आहे नोट कंदा की जो एक्सपायर मेडिसिन्स बि अव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघे थी। वॾी महिरबानी
0: सर। वक़्त जो अहसासु आख़िर में सर कहिड़ो रिसर्च खे पैगाम ॾियणु चाहींदा
1: जंहिंसां असांजो वक़्त जो अहसासु थिए थो लेकिन असांजी त दिलि चवे थी त अञा जेको आहे सो वेहिजे ऐं पेशंट सां ॻाल्हाए पर वक़्त जो अहसास वारे खे ख़बर हूंदी आहे।
0: बिल्कुलु
1: सो हिन जे करे उन्हनि दोस्तनि खे हिन प्रोग्राम जे तरफ़ सां मशवरो इहो ई ॾींदा आहियूं त जेको आहे सो यानी ॾिसो सफ़ाई ऐं निसफ़ ईमान आहे। हमेशह हैंडवॉश करे ज़रूरु जेको आहे जॾहिं बि तव्हां मानी खाओ या जॾहिं बि तव्हां पाखाने मथे अचो अचो चङी तरह ॿ दफ़ा हथ ज़रूरु वॉश कंदा करियो ऐं जॾहिं बि मानी खाओ त हथ साबुण सां धोई करे ऐं पोइ जेको आहे सो खाईंदा कयो ऐं नह ज़रूरु लाहींदा कयो तकरीबन 15-20 ॾींहं जेको आहे सो तव्हांजा नह ज़रूरु छो जो नहनि में जॾहिं मिटीअ जा ज़रात पइजी था वञनि त उन में हज़ारे जरासीम अची वेंदा आहिनि जेके अव्हां खाधो खाओ था उहे तव्हां सां गॾु मुंहं में उन बैक्टेरिया उहे मुंहं में जेको आहे वात में खाधे सां गॾु हलिया वञनि था त उहे अव्हांजे पेट जा जेके बि तव्हां ॾिसो अॼुकल्ह पेट जूं बीमारियूं आहिनि तकलीफ़ आहिनि इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी इन नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ग़लतियुनि जे करे बि जेको आहे टाइम तमामु थोरो आहे सो पछाड़ी में दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। वॾी महिरबानी।
0: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अल्लाह हाफिज़।

भारतीय शहरियन ते हमला मुसम्मत चोगा हैं हमलन में जख्मी थियल शहरियन की जल्द से एहतियाती लाए दुआको आया पाकिस्तान सऊदी सलामती है खुद मुख्तारी के दिफा लाए गड बिठल है ईरान जंग न तो चाहे पर मजामत तां पोते भी ना टंदो ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो है तेहरान सदाई जंग जो मुखालिफ रहो है कदें भी जारे ना रहो ईरान जारियत खिलाफ पेंचो दिफा करे रहो है पेंचे मुफादन जो दिफा जारी रखो वेंदो सिंध असेंबली में एमक्यूएम जो गलान की इजाजत न मिलने के एहतजाज स्पीकर डाई साडो नारेबाजी एमक्यूएम के एहतजाज दौरान सिंध असेंबली वफाकी हुकूमत का पेट्रोल टा लेवी खत्म करने वो ठहराव मंजूर कर वरतो सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह की सदारत हेट शुरू थो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी असेंबली मेंबर्स पारा ऐवान वालू वीडियो सोशल मीडिया से रखने वो मामलो उथारो स्पीकर चो तो मेंबर्स का नाला दियो एमक्यूएम मेंबर्स मामले से एहतजाज शुरू कर चार चयो तो सिंध हुकूमत लेवी खत्म नथी करे सके वफाक का लेवी खत्म करने का मुतालबो कर सके थी स्पीकर इजलास सुभाने ताई मुलतवी कर छो कराची के व्यापारी मीर रजा के अची जांच कदड़ अदालती कमीशन घरू वजी जल सनजार के खमीस से तलब कर वरतो कमीशन की कार्रवाई दौरान एडवोकेट जनरल के रवैये से भी अफसोस ए हैरत जो इजहार अदालती कमीशन मीर रजा केस से जो की कार्रवाई जो लिखित में हुक्म जारी कर छो अदालती कमीशन है एडवोकेट जनरल पारा अदालती कमीशन की कार्रवाई में रंडक वंडण अफसोसनाक है सिंध आला तरीन कानूनी ऑफिसर पारा उथारियल एतराज भी हैरान कदड़ कें सवाल जो कार्रवाई जो हुजन या न हुन कमीशन जो अख्तियार है कमीशन जो मकसद भी केस बाबत हकीकतू अवाम सामू आण है चाल सनजार खमीस से कमीशन अडो पेश थी है सिंध हाईकोर्ट फहमीदा पिताफी केस में आईजी सिंध के शोकास नोटिस जारी कर छो आईजी सिंध घरू सेक्रेटरी डीआईजी सखर एसएसपी घोटकी ए जांच ऑफिसर के 21 सेप्टेम्बर से जाती तौर पेश थे जो हुक्म दई छो अदालत नारी फहमीदा पिताफी के सरदार अब्दुल बारी पिताफी हवाले करने बाबत भी एहतजाज जो हुक्म दई छो फहमीदा की बाजियाबी ऑपरेशन की निगरानी आईजी हवाले डीआईजी सखर एसएसपी कोटकी के आईजी सिंध की निगरानी में कम करने हुक्म जस्टिस तस्नीम सुल्ताना की अदालत लिखित में ऑर्डर जारी कर छो अदालत चो तो जो पुलिस ऑफिसर मुलविस हो कानून मूजिब कार्रवाई कई वही

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रो

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: It's 8 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000-27234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601001।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम
1: 94.3
2: खुश आमदीद भरी कार।

जी तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और जो है कि हमारा प्रोग्राम भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। इसमें डेफिनेटली म्यूजिक भी होती है, मस्ती भी होती है, आपसे बात भी होती है, कॉल भी होती है लाइव शामिल, और जो है कि हमारी प्रोडक्ट के हवाले से बातचीत भी होती है।

आज की इसमें हम रिडल भी बताएंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे। रिडल मीन्स पहली, पहली मीन्स गुजारत, गुजारत गाल बोल भी कंदासे, आया वहां सां कचहरी भी कंदासे। असां जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667।

जी तो मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत सारे स्टोर्स पे ऑलरेडी हो चुकी है। मलिक जफर इकबाल साहब और एम सिद्दीक साहब आपकी जो है कि हेल्पलाइन कॉल रिसीव करते हैं और जहां जहां पे आप कहते हैं वहां पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन आपसे एक शिकवा है, शिकायत है कि अभी तक आपने लाइव कॉल के जरिए अपना फीडबैक बहुत कम दिया है। हमें टैक्स तो कर लेते हैं लेकिन कॉल का इंतजार रहता है। वंस अगेन आई रिपीट आवर कॉलिंग नंबर, लाइव कॉलिंग नंबर, हमारा कॉलिंग नंबर है 03009319667।

0: अच्छा जी, और आपको हमारा जो है कि हेल्पलाइन नंबर तो याद ही होगा, जिस पे आपने जो है कि कॉल कर करके जो है कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जनरल स्टोर्स पे आपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवाई है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। इस पे आपने कॉल करके मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बातचीत करनी है और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवानी है।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।

जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक खूबसूरत ट्रैक प्ले करेंगे। आफ्टर ट्रैक हम जो है कि आपको रिडल देंगे, मतलब पहली जिस पे हमारी बातचीत होगी, और हमारा लाइव कॉलिंग नंबर नोट कर लें। इस ट्रैक से ट्रैक पे जाने से पहले हम आपको अपना लाइव कॉलिंग नंबर बताते चलें। हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03993196677। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं।

अच्छा जी, उसके अलावा जो है कि खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर पे आल्सो अवेलेबल है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आपने कॉल करके हमारे प्रोडक्ट और मजीद जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल करवा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। इस पे कॉल करके आपने मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बात करनी है और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है।

तो जी ट्रैक पे जाने से पहले जो है कि हमने आपको जो है कि आज की रिडल दी थी, यानी कि पहली गुजारत के अगर एक गंजा 50 रुपए में टेंट करवाता है तो 50 गंजे कितने रुपए में टेंट करवाएंगे। जो अगर एक गंजो 50 रुपए में टेंट कराए तो 50 गंजा कितने रुपए में टेंट कराएंगा। इस पहली को गुत्थी को सुलझाने के लिए आपने कॉल करनी पड़ेगी हमें। लाइव कॉलिंग नंबर है हमारा 03009319667। इस पे कॉल करके आपने रिडल पहली बूझनी है।

मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहरापुर। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एग्नी क्रीम, मिल्क राइस विटामिन सी।

उसके लिए आपको हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी। हमारा हेल्पलाइन कॉलिंग नंबर है 03003105109। इस पे कॉल करके आपने मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बात करनी है। और अगर आपने प्रोग्राम में शामिल हो के लाइव कॉल पे हमसे बात करनी है तो हमारा लाइव कॉल नंबर है 03003196।

0: खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले, और हम दावा नहीं दलील देते। अच्छा जी, पहली तो आपको याद ही होगी, पहली बुझने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, हम टेक्स्ट रीड करके प्रोग्राम के एंड में शामिल करेंगे पहली का रिप्लाई, और आप खुद देख लेंगे, सुन लेंगे कि किसका राइट आंसर था। पहली है कि एक गंजा अगर 50 रुपए में ट्रेंड करवाता है तो 50 गंजे कितने रुपए में ट्रेंड करवाएंगे। एक गंजो जेकर 50 रुपए में ट्रेंड कराए तो 50 गंजा कितने रुपए में ट्रेंड कराईंदा। तपो मुफ्त जा मशवरा तहां के खपन तपो देऊं भला। अप्लाई लाजमी कजो, छाकर त मुफ्त जी हूं कदर घट हुंदी आ, पर तमाम इंपॉर्टेंट आ, अहम अवां के असा मशवरा दींदाऊं। प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी असा दावा जेका कयूं था उनजो दलील जो मौको दियो। प्रोडक्ट असा जी A1 सुपर आला है, जेके दोस्त इस्तेमाल कर रहा आहिनि उन्हनि जा फीडबैक असां खे काफ़ी जा टैक्स वसीले वॉइस कॉल वसीले असां खे मौसूल थींदा रहंदा आहिनि, पर असां चाहियूं था त लाइवली कॉल जे ज़रिए असां खे अवां जा रिप्लाई अचनि। असां खे कॉल अची रहे आहे, हिकिड़ो कॉलर प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हेलो जी, एदा केर किथां खां? वेलकम भली यार पहिरां प्रोग्राम में जी।
1: साईं पहिरीं ॻाल्हि त एतिरा गंजा ईंदा काॾहों, को फार्म या को अहिड़ो त न आहे
0: न? अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, न न न न, इहो इहो जवाबु न आहे। असां चऊं था त बिल फर्ज़ हिकिड़ो गंजो ॿुधो
1: जवाबु तव्हांखे ॾियूं था।
0: हा,
1: माना 25 ब्लेटनि में सफ़ा ओके थी वेंदा 250 रुपयनि में, बाक़ी लागत हुननि ते लॻंदी जेको हुननि जी जेका थींदी मज़दूरी उहा 2500
0: रुपए में जेको आहे 50 गंजा तयारु थी वेंदा। बीहर बीहर बीहर पंहिंजो तारीफ़ करायो, सभु दोस्त अव्हां खे ॿुधी रहिया आहिनि पूरो मैरापुर जे भर पासे सां।
1: आबिद हुसैन शंबाणी रसूलाबाद।
0: आबिद हुसैन शंबाणी मुंहिंजा नाले भाई आहियो, पोइ हाणे तव्हांजो जवाब जेकॾहिं सही न निकितो त पोइ ॾिसो असां ते बि माण्हू खिलंदा। ठीक आहे ठीक आहे, जेकॾहिं अव्हांजो रिप्लाई आयो आहे। प्रोडक्ट जे बारे में अव्हां कीअं छा था चवणु चाहियो? इस्तेमालु करणी पवंदी न प्यारा, ज़बरदस्त ॾिसो ॿुधाइण लाइ त प्रोडक्ट इस्तेमालु करणी पवंदी
1: जी।
0: न कराईंदासीं डेफिनेटली, त पोइ इस्तेमालु त करणु घुरिजे न हिकु भेरो घटि में घटि। पोइ नेक्स्ट कॉल में उमेदु कयूं था त अव्हां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे लाज़मी प्रोडक्ट जे हवाले सां बि आगाह कंदव। दोस्तनि संगत साथ कलाम दुआश का वाह वाह सभिनी, मुंहिंजे तरफ़ां अव्हांजी सॼी संगत खे अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, महिरबानी,
0: लव यू, लख लाइक कुर्ब, ॿुधंदा रहो GFM 94। थैंक यू पहिरां। जी दोस्तो, अव्हां ॿुधो त आबिद हुसैन शंभाणी जे बकोल त 2500 रुपए में 50 गंजा बिल्कुलु चमकंदड़ नज़र ईंदा, ओके थी वेंदा, टिंड थी वेंदी सभिनी जी।

अञा भी जी रहे असाज प्रोग्राम में को दोस्त लाइव कॉल वसीले असि प्रोडक्ट के हवाले की हवाले से गाल बोल करना चाहे तो वो असा के कॉल कर सके तो 0300-931-9667 ते अरे प्रोडक्ट के हवाले से कें भी क्यूरी में को भी सवाल या गाल बोल करना चाहे तो वो असि हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-509 इन कॉल कर रिहायत ही बेहतरीन इंसान है प्यार मानून से गाल बोल थी अवान की मलिक जफर इकबाल साहब है एम सिद्दीक साहब से गाल बोल करे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पिण कराए सको मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिते अवेलेबल हैं वह अवान जो मेहरापुर की शाही बाजार है शाही बाजार में जी जनरल स्टोर्स अवान जहाँ असाजा मौजूद हैं उनमें खुशी जनरल स्टोर मेहरापुर फैजान जनरल स्टोर मेहरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहरापुर हफीज जनरल स्टोर मेहरापुर कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर मिल्क राइस प्रोडक्ट्स में जी प्रोडक्ट शामिल हैं उनमें मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्ने क्रीम आए मिल्क राइस विटामिन सी खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले और हम दावा नहीं दल

आबिद हुसैन चंबानी साहब ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया ऑलरेडी कि उन्होंने कहा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे लेकिन प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि आप कोई भी चीज़ किसी को भी प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। जी FM 94 मेहराबपुर के सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को और मिल्क राइस ब्यूटी शो के सुनने वाले दोस्तों को बिल्कुल एतमाद देते चलें कि डेफिनेटली हम जिस प्रोडक्ट की प्रमोशंस कर रहे हैं वो डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत ही आला और अच्छी है। और जहां तक आज की रिडल यानी कि पहली गुजारत जो सवाल आए तो गुजारत आए तो जो करें पंजा 50 रुपए में एक गंजो टिकण कराए तो 50 गंजा केतरे रुपए में टिकण कराईंदा।

अच्छा ठीकु हिकिड़ी मुफ़्त में असां ब्यूटी टिप्स अवांखे ॾींदा हलूं, छाकाणि त ब्यूटी जेका आहे न उहा सिहत सां लाॻापियल हूंदी आहे। जेकॾहिं सिहतमंद इंसानु न आहे त अव्हांजी ब्यूटी बि नज़र कोन ईंदी। ऐं जेके डुबरो आहे, को बीमार आहे, कंहिं मर्ज़ में मुबतला आहे, त हुनजी ख़ूबसूरती बि नज़र कोन ईंदी। ख़ूबसूरत नज़र अचण लाइ अव्हांखे पंहिंजी सिहत जो लाज़मी ख़्यालु रखिणो आहे, ऐं सिहत जो ख़्यालु रखण लाइ हिकिड़ो तमामु इम्पोर्टेंट मेलेडियूं माहिरूं ऐं त हुननि खे ॿुधाईंदो हलां त सिंध में कंहिं ज़माने में जेको आहे त नेरनि जेका हूंदी उहा ॾाढी स्ट्रांग हूंदी तमामु सुठे तरीक़े सां। अॼु बि ॻोठनि में शायदि थी रही हुजे, असांजो तालुक़ु शहरनि सां आहे, शहरनि सां काफ़ी माण्हुनि जी जेका नेरनि आहे उहा मिडिल क्लास या ग़रीब मुतवसत तबिके जेको विचोलो तबिको आहे हुनजी जेको नेरनि आहे उहा ॾाढी ख़राबु थी चुकी अधु सिंध खां मथे नेरनि में जेको आहे त चांहि पापे ते रुगो गुज़ारो हली रहियो आहे, जेको तमामु सिहत लाइ हानिकार आहे। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि अव्हांखे दिलि सां लॻी हूंदी त नेरनि असांजी ख़राबु थी चुकी आहे। असांजे नेरनि त ॻोठनि में लस्सी मखण ऐं ज़बरदस्त जेको आहे त पराठे ऐं पराठे वग़ैरह सां थींदी, चूरियूं बि हूंदियूं, ज़बरदस्त बुसरियूं बि हूंदियूं, मानी सुठी हूंदी नेरनि में। पर जेसीं ताईं मुंहिंजो तजुर्बो आहे, मूं सिंध जा काफ़ी ॻोठ जेके आहिनि त घुमिया न आहे। मां पंहिंजे ॻोठ खां बि जेको मूंखे अंदाज़ो आहे त मां पंहिंजे ॻोठ में पहिरियों वेंदो हुउमि त मूंखे नेरनि में सुठी जेका त मानी मिलंदी, पराठा मिलंदा हुआ, मखण बि मिलंदो, खीर बि मिलंदो ऐं जेको आहे त ज़बरदस्त लेवल जी चूरी वग़ैरह बि असां खाईंदा हुआसीं। हाणे जॾहिं बि कंहिं दोस्त खे जॾहिं असां जो ॻोठु अचणु वञण जी किथे दावत हूंदी आहे, पंहिंजो ॻोठु वञणु हूंदो आहे, त उन्हनि खां हिकु ई फ़रमाइश हूंदी आहे मुंहिंजी त बाबा तव्हां जेकॾहिं असांखे वधीक ख़िदमत नथा करे सघूं त सिंपल ई सूखड़ी आहे ॻोठ में लस्सी। हाणे लस्सी बि असां वटि नापेद थी वई आहे। कुझु ज़मानो हुयो त लस्सीअ लाइ जेको आहे त मतिलबु ओड़े पाड़े खां

0: हिक ॿिए खे जेको आहे त ईअं ई मिलंदी हुई ऐं मानी में सुबुह सां या मंझंदि जी मानीअ में लस्सी ॾाढी जेको आहे ज़बरदस्त तरीक़े सां इस्तेमालु थींदी हुई। हाणे एॾियूं सारियूं ॻाल्हियूं कंदे कंदे असल में टिप ते मां एतिरो अञा ॻाल्हि कोन कई आहे। टिप ई आहे त मतिलबु चवण जो मक़सदु तव्हां सम्झी विया हूंदव, अॼोकी टिप ई आहे तव्हांजी सिहत जो राज़ इहा आहे त मानी असां जेका टे टाइम खायूं था जंहिंमें नेरनि आहे, मांझांदो आहे ऐं राति जी मानी आहे, त हाणे टिनी जा जेके आहिनि त टाइम उहे डिफरेंट आहिनि, अलॻि आहिनि। सो जेको नेरनि आहे उहा सुबुह सां डेफिनेटली कमकार ते वञण खां अॻु में जेको आहे त कुझु न कुझु खाई वञिजे, इहो कुझु न। नेरनि में अव्हांखे स्ट्रांग ऐं टाइट ऐं एनर्जी वारी नेरनि करणी आहे, जंहिंमें शहर में दोस्त काफ़ी जूसिस बि पीअंदा आहिनि, खीर बि पीअंदा आहिनि या मल्टी कुझु फ्रूट्स वग़ैरह बि खाईंदा आहिनि, पर ॻोठनि में घटि पराठो मानी जेको बि आहे तव्हांजो हाल हाज़ुर खीरु आहे या मखण आहे उन सां खाओ, ज़बरदस्त तरीक़े सां मानी खाओ ऐं पोइ वञी कमकार ते वञो। न त जेको आहे त लिंग उन में तव्हांजा सुस्तु रहंदा ऐं ॾकंदा रहंदा, अव्हां वज़न वारो ॿार वारो कमु या दिमाग़ वारो कमु अव्हां कोन करे सघंदा। असां वरी उन जे उबतड़ में असां इहो करे रहिया हूंदा आहियूं त मंझंदि जी मानी पेट भरे या राति जी मानी पेट भरे खाईंदा आहियूं। हाणे मंझंदि हकीम लुकमान खां कंहिं पुछियो त जेकॾहिं उन्हनि हिकिड़ी फ्रूट जो नालो खयों त सूफ़ या फल फ्रूट मंझां मेवे मंझां सूफ़ जेकॾहिं तव्हां सुबुह जो खाओ त पाण खाओ, चई मंझंदि जो खाओ त महिमान खे खारायो ऐं राति जो खारायो त कंहिं दुश्मन खे खारायो। ऐं इन मां मुराद इहा आहे त पाण खे सुबुह सां खाओ, मतिलबु ज़बरदस्तु उन में फ़ाइदो जेको आहे त सुबुह सां आहे, असांजो मादो ख़ाली हूंदो आहे, उनखे सही तरीक़े सां उनखे जेको आहे त पी छॾींदो आहे। ऐं बाक़ी जेकॾहिं मंझंदि में नॉर्मल ई आहे त उनखां पोइ बि महिमान जे लाइ चयो वियो, हालांकि पाण बि खाई सघे थो, पर राति जो स्ट्रांगली दुश्मन खे खारायो, माना तव्हांखे जेकॾहिं कंहिंसां दुश्मनी आहे त राति जो उनखे सूफ़ खारायो, छाकाणि त सूफ़ में आयरन हूंदो आहे, आयरन माना लोह, उहो तव्हांजो मादो राति जो कमु करणु वर्किंग करणु छॾे ॾींदो आहे। सो अॻे ॻोठनि में ईअं हूंदो, अॼु बि ईअं ई आहे, मां ॻोठनि जी कहिड़ी तारीफ़ कयां त शाम जे सजे लते ताईं मानी तयारु थी वेंदी, मानी खाई वेंदासीं, पर असीं शहरनि में इहो आहे त राति जो 8-9 या 10 ताईं बि मानी हले थी या 12 ताईं मानी हले थी, पोइ असां खाई करे उहो जेतिरी बि वॉक करण जी कोशिशि कयूं, राति जो असांजो मादो एतिरो वर्किंग कोन थो करे, असां निंड पई सुम्ही था रहूं, इहो तमामु नुक़सानदेह अमल आहे। सो चवण जो मक़सदु त पंहिंजनि ॿारनि खे, पंहिंजनि बचनि खे ऐं पाण वॾड़ा जेके बि आहिनि कमकार ते वञनि था सॼो ॾींहुं, महिनत मशक़त मज़दूरी अधूरियूं भेनरियूं असांजी माइयूं जेकॾहिं ॿुधी रहिया आहिनि त ख़ुदा रा त नेरनि में साजुरो थी। अॻे त ॾाढो जेको आहे त असांजो सभाजड़ियूं जेको आहे माइयूं भेनरियूं अधूरियूं जेको आहे त बिल्कुलु अर्ली मॉर्निंग में सुबुह सां उथंदियूं, अॼु बि काफ़ी मां बार बार इहो चवण ते इन करे मजबूर थो थियां त मूंखे को कॉल करे ईअं न चए त दादा असां अॼु बि असांजे घर में ईअं ई आहे, बिल्कुलु आहे, पर मां जनरली ॻाल्हि थो कयां, जनरली ॻाल्हि इहा आहे त घटि थी वियो आहे इहो अमल, असांजी जेका प्रैक्टिस हुई असांजे वॾनि जी हुई उनखे वापसि वरजाईंदासीं। ॻोठनि ऐं शहरनि में छा छा फ़र्क़ु आहे, कहिड़े क़िस्म जो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, काफ़ी हिकु त बज़ाहिर न आहे, ॿियो जेको आहे त उन में कुझु लिकल गुझा राज़ आहिनि जेके असां उहो ॻोठ ऐं फ़र्क़ु शहर जो फ़र्क़ु उहो रखंदा आहियूं, उन में फ़ाइदा शहर में घणा आहिनि, ॻोठ में घणा आहिनि, उन ते ॻाल्हि ॿोल अञा असां सुभाणे बि कंदासीं। ऐं ॿुधंदा रहो मिल्क राइस ब्यूटी शो आबिद चौहान सां गॾु GFM 94 मेहरापुर ते। मिल्क राइस ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स असांजो लाज़मी हिकु भेरो इस्तेमालु कयो, छाकाणि त असां दावा न दलील ॾींदा आहियूं, असांजी दलील असांजे ॾियण लाइ असांखे मौक़ो ॾींदा, असां वटि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिलु आहिनि ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, एक्नी क्रीम यानी कि अव्हांजे दाग दाणनि मोइड़नि खे ख़तमु करण लाइ ख़ुसूसनि नंढी उमिरि में थी वेंदियूं। आख़िरी हिकिड़ो जेको आहे त कोई लकी कॉलर आहे, असां उहा कॉल शामिलु कंदासीं, उनखां पोइ जेको आहे त पंहिंजे प्रोग्राम लाइ असां वाइंड अप कंदासीं ऐं असां पंहिंजी अॼोकी रिडल बि ॿुधाईंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां जी अदा? हलो जी, केर प्यारा किथां खां?
1: हलो
0: जी जी, केर किथां खां?
1: हलो
0: जी जी, आवाज़ अचे पियो पहिरां मुंहिंजो? माज़रत खां आहियूं, आख़िरी कॉल ड्रॉप थी वई, सो अजोके प्रोग्राम में।

अॻु में असां जेका थो पियो हिकु भेरो कॉल अची कॉल छा हलो अस्सलाम वालेकुम के जी तव्हां खां साईं साईं हुसैन बि घर ख़ुश आमदीद बहिरा मां बि इहो ई चवंदुमि त प्रोग्राम में टे मिंट बचिया आहिनि, आख़िरी ट्रैक प्ले कंदासीं ऐं असां इजाज़त वठंदासीं। अॼोकी गुज़ारत ॿुधायो पहिरियों सभ खां पहिरियों। पंजवीह सौ रुपया पूरो हिसाब करे छॾियो थो प्रोग्राम ॿुधजो बसि हिकु अधु मिंट में ई इहा गुज़ारत असां ॿुधाइण वारा आहियूं। हुनजो रिप्लाई हुनजो जेको निकिरंदो ऐं डेफिनेटली उमेदु कयूं था तव्हां प्रोडक्ट जेको आहे त वरिती हूंदी हिन महिल ताईं या कोन अञा। बिल्कुलु बिल्कुलु उहो वाइदो बिल्कुलु वाइदो उहो अव्हां खे वफ़ा करिणो आहे ऐं डेफिनेटली अव्हां असांजे ॿिए प्रोग्राम में बि कॉल कंदो शामिल बि थींदो ऐं हिन में हिकिड़ो सॉन्ग सिलेक्ट थी चुको आहे। सो को सलाम दुआ को दोस्तन जो नाम को खण चाहियो जेको भी अजो को आखिरी ट्रैक आहे उन्हनि अव्हांजी ॿियो तमामु दर्जी एफ एम 94 मैरापुर जी ॿुधंदड़ टीम खे संगत खे सॼी खे डेडिकेट कंदासीं। वॾी महिरबानी पहिरां प्रोग्राम में कॉल करण लाइ। थैंक यू, लव यू जी। त दोस्तो अजोकी रिडल जो आंसर आहे या 2500 रुपए वाली कलेक्शन जेका त उहा हिसाब किताब अलॻि किथां दोस्तां ॿुधनि। मूं चयो त हिकु गंजो जेकॾहिं 50 रुपए में टिंड कराए थो त 50 गंजा टिंड केतिरे में कराईंदा? त गंजो ऑलरेडी जॾहिं आहे उहो टिंड कीअं कराईंदो? टिकण त पोइ वारनि वारो कराईंदो आहे न। मां चवां थो त हिकिड़ो जेकॾहिं गंजो आहे त उहो केतिरे में गंज कराईंदो? गंजो आहे त गंज कराइण जी ज़रूरत ई न आहे, मतिलबु उहो ऑलरेडी पहिरियां खां गंजो आहे ऐं गंजो गंज कोन कराईंदो आहे, गंज वारनि वारो गंज कराईंदो आहे। वॾी महिरबानी, लव यू, लख लाइ आख़िरी ट्रैक ई अव्हां इंजॉय कंदा ऐं हिन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा। सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हमलन में जख्मी थियल शहरियन जी जल्द सेहतियाबी लाए दुआ गो आया पाकिस्तान सऊदी सलामती ऐं खुदमुख्तारी जे दिफ़ा लाइ गॾु बीठल आहे.

ईरान जंग नथो चाहे पर मज़ामत तां पोइते बि न हटंदो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त तेहरान सदाई जंग जो मुखालिफ़ रहियो आहे ऐं कडहिं बि जाइरे नाहे रहियो। ईरान जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रहियो आहे, पंहिंजे मफ़ादनि जो दिफ़ा जारी रखियो वेंदो।

असेंबली में एमकेएम जो ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिलण ते احتجاج स्पीकर डाइस ॾाढो नारेबाज़ी एमकेएम जे احتجاج दौरान सिंध असेंबली वफ़ाक़ी हुकूमत खां पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर रवेश कादर शाह जी सदारत हेठि शुरू थियो त अपोज़िशन लीडर अली ख़ुर्शीद असेंबली मेंबर्स पारां ऐवान वारियूं वीडियोस सोशल मीडिया ते रखण वारो मामिलो थारियो। स्पीकर चयो त मेंबर्स जा नाला ॾियो, एमकेएम मेंबर्स मामले ते احتجاج शुरू कयो। जालंधर चयो त सिंध हुकूमत लेवी ख़तम नथी करे सघे, वफ़ाक खां लेवी ख़तम करण जो मुतालबो करे सघे थो। स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾियो। हिकु साल दौरान को बि नओं टैक्स नाहे लॻायो, बरामदात ते वधल माशी तरक़ी हुकूमत जी तरजीह आहे। बजट खां पहिरियां बि सनतकारनि सां मुशावरत थी, ॾुखियनि हालतुनि बावजूद बुनियादी सुधारा कया विया। वज़ीर आज़म जूं सनतकारनि ऐं कारोबारी शख़्सियतनि जे वफ़द सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त इन्फोर्समेंट ज़रिए हिकु साल में 800 अरब रुपया रिकवर कया विया। वापारी बिरादरी जे वफ़द वज़ीर आज़म जो तौरो मञींदे चयो त मुशावरत जो अमल आईंदा बि जारी रहणु घुर्जे।

ठठो भरसा खौफनाक हादसो ट्रैक्टर ट्राली बिजली की तारन से टकराइजन के नतीजे में टिन औरतों समेत छह जना फौत 15 का जख्मी पीर जो वोट भरसा पलाल से भरियल ट्रैक्टर ट्राली बिजली के तारन से टकराइजन सबब करंट लगन के नतीजे में फरीदा हनीफ सिकंदर एलारिनो समेत छह जना फौत थी गया पोतियन जा लाश ए जख्मी वकली अस्पताल मुंतकिल इतला मिलने से पोतियन ए जख्मियों के वारिसन जो वो अंग भी अस्पताल मकली पहुंची वो रांची के व्यापारी मीर जाकिर की जांच कदड़ अदालती कमीशन गरू वजीर जाल सनजार के खमीस से तलब कर वरतो कमीशन की कार्रवाई दौरान एडवोकेट जनरल के रवैये से भी अफसोस ए हैरत जो इजहार अदालती कमीशन मीर रजा केस की कार्रवाई जो लिखित में हुक्म जारी कर छो अदालती कमीशन चाहिए है एडवोकेट जनरल पारा अदालती कमीशन की कार्रवाई में दंडक बणजन अफसोसनाक है सिंध आला तरीन कानूनी ऑफिसर पारा उथारियल एतराज भी हैरान कदड़ कें सवाल जो कार्रवाई जो हुण या न हुण कमीशन जो अख्तियार है कमीशन जो मकसद भी केस बाबत हकीकतू अवाम सामू आण है जाल खमीस से कमीशन आडो पेश थे

सिंध हाई कोर्ट फहमीदा पताफी केस में आईजी सिंध के शोकाज नोटिस जारी कर छो। आईजी सिंध घरू सेक्रेटरी डीआईजी सक्कर एसएसपी कोर्ट की जांच ऑफिसर के 21 सितंबर से जाती तौर पेश थे जो हुक्म। अदालत नारी फहमीदा पताफी के सरदार अब्दुल बारी पताफी हवाले करण बाबत भी जांच जो हुक्म दई छो। फहमीदा की बाजियाबी ऑपरेशन की निगरानी आईजी हवाले डीआईजी सक्कर एसएसपी घोटकी के आईजी सिंध की निगरानी में कम कर हुक्म। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जी अदालत लिखित में आर्डर जारी कर छो। अदालत चयो तो जैसे को पुलिस ऑफिसर मुलविस हो तो कानून मूजिब कार्रवाई कई वे। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरिफ साकी तशद जो केस दाखिल। सचल थाने ते दाखिल केस में कोनेन अली गोहर शाह बेन के नामजद किया। एफआईआर में कातलाने हमले तशद बेगुनाह कैद रखने का कलम शामिल। प्रोफेसर आरिफ साकी एफआईआर में जानायो है तो उन सफूरा चौक वट पेंजी गाड़ी के नुकसान जो अजालो करण जो चयो त बिन गनमैन खेस भाईचे समेत तशद जो निशानो बणायो। जवाबदार होटल ते वठी विया कैद कर बदतरीन तशद जो निशानो बणायो। सूबाई घर वजीर वाक्य जो नोटिस वठंदे एसएसपी ईस्ट का रिपोर्ट तलब कर वरती। वाक्य में मुलविस जवाबदार खिलाफ कानून मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत जारी। कानूनी या हिफाजती मदद की जरूरत हुए तो पुलिस हर मुमकिन सहकार करें।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
0: मेरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

प्यार में जॾहिं माण्हू को पागल थींदो आहे त हुनखे इहे ई कैफ़ियतूं महसूसु थींदियूं आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत रोमेंटिक जुगलबंदी अदनान समी खान ऐं आशा भोसले जी हुई। पाकिस्तानी फिल्म सरगम सैयद नूर जी डायरेक्शन हेठि इहा चई।

सचमुच हो त मूंखे पाण अवां जी फोन कॉल जो इंतज़ारु रहंदो आहे। कॉल असां न हींअर बि कंटिन्यूसली हलनि पियूं, लेकिन प्रोग्राम जे पैटर्न फॉर्मेट मूजिबि असां अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि करणु चाहींदा आहियूं। ऐं काफ़ी सारा दोस्त उहे आहिनि जेके मुसलसल प्रोग्राम खे ॿुधी रहिया हूंदा आहिनि, ट्रैक्स खे म्यूज़िक खे इंजॉय करे रहिया हूंदा आहिनि, असांजूं ॻाल्हियूं बि बर्दाश्त करे रहिया हूंदा आहिनि। प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में हर कोई दोस्त पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि चवणु चाहींदो आहे, ऐं सभिनी जो मैसेज त प्यार ऐं मोहबत जो हूंदो आहे, पर तंहिं हूंदे बि असांजे दिलनि में किथे न किथे का सनी सुकी, का कंहिंजे लाइ का ख़लिश, का रंजिश का हूंदी आहे। हुनजो सबबु केरु थो बणिजे? सदाई असां रुठल हुजूं, कॾहिं असां बि कंहिंखे परचाइण जी कोशिशि कयूं, कॾहिं को अव्हां खे। ऐं रुसण परचण जी इहा रीति पंहिंजनि सां ई हूंदी आहे, को रोड वेंदे, राह वेंदे, रस्ते वेंदड़ खां कॾहिं को रुसंदो बि न आहे।

प्रोग्राम में मुझो आया वहां जो साथ हूं दो है नाए सवा नाए का वडी वेदे करे रात 11 बजे तई ए घणे भांगे असा उन में आवाज जो फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश करता हूं ए फोन कॉल्स अटेंड करता हूं ए फोन कॉल अटेंड करने लाई डेफिनेटली आवा असा के कॉल करदा है असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इन ते आवा मैसेज पैगाम पे जो वॉइस नोट भी उमाने सको था ए उनसा गरुगड एसएमएस करने लाई 888 1 इन ते मैसेज भी मोकले सको था।

जॾहिं लफ़्ज़ अव्हां जो साथ न ॾियनि तॾहिं दिलि जी ॻाल्हि अखियुनि सां बयानु थींदी आहे ऐं दिलि जी ॿोली ख़ूब वाक़िफ़ हूंदियूं आहिनि, छाकाणि त अखि खे दिलि जो आइनो बि चयो वियो आहे।

0: छाकाणि त मोहबत जी इब्तिदा या आगाज़ उहा थींदी अखियुनि खां आहे। इंसान जे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जेको इम्पॉर्टेंट हिसो चहिरो ऐं चहिरे में बि जेकॾहिं असां वधीक इम्पॉर्टेंट शइ खे ॻोल्हण जी कोशिशि कंदासीं त उहा हूंदी आहे अखि। ऐं अखि खे शारी जे ज़ुबान में दिलि जो आइनो सॾियो वियो आहे। असांजे दिलि में छा आहे उहो असां कंहिंजी अखि खां अंदाज़ो लॻाए सघंदा आहियूं। जेकॾहिं उहो दोॾा ईअं फाड़े करे जेकॾहिं कंहिंखे ॾिसी रहियो आहे त सम्झंदा आहियूं इहो कावड़ जो इज़हार करे रहियो आहे, उहो ॾुठल आहे, हुनजे दिलि में शायदि का नफ़रत आहे या कावड़ आहे। ऐं जेकॾहिं उहा निमाणी अखि झीरवी अखि करे अधु ॿूटे करे कंहिंखे ॾिसंदो आहे निगाह अंदाज़ सां त असां सम्झंदा आहियूं त इन निमाणे अंदाज़ में प्यारु भरियलु आहे, मोहबत आहे। पर जेकॾहिं उन अखि खे अदाउनि सां हेॾे राइट खां लेफ़्ट यानी कि खॿे खां सॼे सॼे खां खॿे फेराईंदो आहे त उन में शरारत लिकल हूंदी आहे। जेकॾहिं निगाहूं उहे हेठि करे छॾिबियूं आहिनि त उन में हया हूंदी आहे। निगाह जेकॾहिं उहा मथे वेंदी आहे आसमान ॾांहुं दीद हूंदी आहे त उन में दुआ हूंदी आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं चयो शायर त निगाह जॾहिं फेराए छॾिजे को कंहिंखां मुंहुं मोड़े छॾिजे त उहा मोहबत करण लाइ करण वारे लाइ मौत हूंदी आहे। वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं। ॿुधंदा रहो दिलि जी ॻाल्हि आबिद चौहान सां गॾु जी एफ एम नेटवर्क ते।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रिया और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। मिल्क राइज ब्यूटी

0: जी सोप मेक्राइस एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 0300-3105-109।
1: नूरे जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदा सालन खा जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हां भाग भरी चंगो थो लगे मां हाने ही थो वठी अचा।
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद।
5: खुश खबर

0: अहम दुनिया जी एफएम नेटवर्क जी दोस्तों जै जो इंतजार हो वह घड़ी अची वही अस अटेंड कंदे अवह जो कॉल्स कॉलर लाइन ते आन कॉल अटेंड कंदे अस्सलाम वालेकुम केर साईं कथा का हेलो अस्सलाम वालेकुम केर पैरा कथा का हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साईं कथा का
1: वालेकुम सलाम

0: अलाह जा एहसान दुआ जानी पंहिंजो तारीफ़ कराए जो हाफिज़ मोहम्मद अली रिंद तालको गड़ी खैरो का
1: मोहम्मद
0: हलीम अनीस हनीफ हनीफ वेलकम प्यारा भली कार प्रोग्राम में प्रोग्राम कैं पो लगे अज बुधंदे शायरी क्या बात हल तो जिंदगी तुझी ठाया
1: तू अंगल जो करे पर

0: तव्हांजे आपो कहानी कथा वञ को सही सूर जम कोन सभई दर्द वींदा लही
1: जी
0: गोट जीन त मेर द ते रहा या श्री हेल्प जिंदगी
1: अभी वाह वाह वाह श्री क्या बात है
0: आओ तो के वटन आयो हाय श्री अब द जान हेल्प जिंदगी
1: अभी हाय हाय क्या बात है क्या बात है केर रहलंदो साईं एड़ी प्यारी शायरी बुधण का पो एड़ी दिल जी गाल बुधण का पो आवा सा केर गद नलंदो वाह वाह लाजो
0: ताहा जो प्रोग्राम पे मिठो आ ताहा जो गालियो पे मिठो ने ताहा जो आवाज मिठो वरी ना एड़ो मिठाण मेरे मिठी जाय सुती पे कजे
1: ताहा पान तमाम प्यारा मानू ए तमा जे का शायरी इन में शामिल कई है असा प्रोग्राम में चार चंद लगाए छड्या हां
0: मके कलाम बुधाए जो रहमान मुगल जो गर तीस त जीन मारन सा मरण मारन सा
1: जी बी लफ्ज बुधाए जो इन जा
0: आ प्रोग्राम में नी गाने जा के शुरू वाला लफ्ज त उन में तो जीन पे मारन सा वे पे मारन सा जीन मारन सा मरण मारन सा रहमान मुगल
1: वाह वाह वाह रहमान मुगल यानी के शर्मा सिंधी क्या क्या बात है क्या बात है को दोस्तन जा नाम शामिल करण चाहिंदो
0: हां दोस्त आ मुजो प्यारो श्री दोस्त दोदापुर में बुधंदो आ नजीर लोहर आसिफ लोहर
1: जी
0: आए ब्या मुगा ओ ट्रेन सदाम सेन जिंदा उन जनन नारायण ममदास करंद यूनुस करंद अब्दुल्ला करंद
1: जी
0: अली खान करंद सजी संगत ता के सलाम कइते
1: साईं सजी संगत के मुजे तरफा भी सलाम
0: वालेकुम
1: सलाम वालेकुम सलाम अल्लाह से खुश रखनो सलाम हो जो शाद हो जो वडी मेहरबानी लव यू लख लाइक कुर्बान

0: जी दोस्तों, कॉलिंग जो सिलसिलो कंटिन्यू आहे, असां जेतिरियूं वध खां वध मैक्सिमम कॉल शामिल कंदासीं, असां ख़ुशी थींदी। कॉलर असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम सलाम, शिकारपुर
0: खां। छा नालो ॿुधायो भाउ? शिकारपुर खां
1: अली खान जतोई।
0: अली खान जतोई, वेलकम भली कार, ख़ुश आमदीद प्यारा प्रोग्राम में।
1: खैर अलहमदुलिल्लाह,
0: साल साल दिल जी गाल प्रोग्राम आहे का? दिल जी गाल पंहिंजो
1: दिल जी गाल असांखे बेहतरीन ॾाढो पसंदि अचे, ॾाढो वणी थो।
0: वाह
1: आयो
0: गाया यो गायो दा, यो गालायो दा। थोड़ो, थोड़ो सुर, सुर लय पैदा कियो ना।
1: ताल सजे में मोन लिखायो थी, सिकन सिकाए सोना मारे थी। केड़ी दुनिया में तुम तो आए, मुझे प्रजा साई। अठ महीना गुज़री विया पर रुख बर न आई, सिकम सिकाए सोना मारे थी। एड़े मुले बारण मारे थी।
0: क्या बात है, क्या बात है। दोस्तन जा को नाम शामिल करण चाहिदो कहीं के सलाम को दुआ?
1: हां दोस्त, तेरे कमाया जतई
0: जी।
1: आए गुलाम जतई पागत के गयो
0: जी। आए
1: एक लोर आ
0: पंहिंजो बागड़ जी त मुंहिंजे ज़िले में अची पहुतो।

तव्हां पोइ वञी करे पंधु करे सलाम ॾेई चऊं न मां छो बागड़ जी त मुंहिंजे ज़िले में अची पहुता मां छो वेझो वञी करे सलाम दुआ ॾेई चयांसि पहुची करे वाह वाह वाह वाह मामन खे सलाम भाउ शामिल कयूं था पंहिंजी प्ले लिस्ट में ऐं ॿुधंदा रहो प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि थैंक यू वॾी महिरबानी लव यू रखल आहे कुर्ब अछो त गॾिजी ख़ूबसूरत ट्रैक रहमान मुगल सरमद सिंधी जी आवाज़ में इंजॉय कयूं उन खां पोइ साॻी कॉलिंग जो सिलसिलो शुरू कंदासीं जीअण माण्हुनि मरण माण्हुनि सां

सिंध जे मारवड़नि झांगिड़नि जो गायक हुन सजण साणीअ जा गीत ॻाए पाण खे अमरता बख़्शी पखड़नि पवारनि खे सारींदे हू अॼु बि हुननि सां मरण ऐं जीअण जा वचन वरजाए थो छुली छॾ म छपरे ॾुली छॾ म ॾे पसी वण वतन जा वणकी अची वे सजण साणे कंहिं अणासी विसरे हैफ तिन्हीं खे होए वतन जिन विसारियो।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सगर आऊ है आबिद चौहान आए असा सगर एक कॉलर लाइन ते मौजूद है कॉल अटेंड कंदा से प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदा से अस्सलाम वालेकुम के पेरा के थागा हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साईं के थागा

दिल में जेके राज हुंदा आहिनि उहे सभिनी सां शेयर त न कबा आहिनि पर पंहिंजनि सां कबा आहिनि उनखे ई दिलि जी ॻाल्हि चइबो।

0: असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? कहिड़ो जसकाणी भाउ?
1: लियाकत
0: अली खकराणी लाड़काने खां। वेलकम भली ॻाल्हि, लाड़काने वारनि जी पहिरीं कॉल शामिल थी आहे। लाड़काने वारा तव्हां बि वॾी कंदा ऐं हिन महिल जाॻिया बि देरि सां। कहिड़ा हालनि मुंहिंजा भाउ? प्रोग्राम कीअं पियो लॻे?
1: ज़बरदस्त।
0: अव्हांजी फस्ट टाइम कॉल लॻी आहे?
1: जी जी सर।
0: प्रोग्राम बाक़ाइदगी सां रेग्यूलर ॿुधो पिया या अॼु इतफ़ाक़ थियो ॿुधण जो?
1: मूंखे चार पंज छह ॾींहं थी विया
0: आहिनि।
1: ॿुधायां
0: पियो, कॉल अॼु लॻी आहे। वाह वाह वाह वाह, असांखे बेहद ख़ुशी थी अव्हांजी कॉल कनेक्ट थी। छा चवणु चाहींदो?
1: सुठा कम कयूं, पंहिंजी भलायूं कम कयूं। आख़िरी दौर आहे, जेतिरो थी सघे इंसान सुठा कम करे।
0: बिल्कुलु, सुठो कमु कंहिंखे चवंदव? घर जी सपोर्ट कजे, माईअ सां गॾु जो किचन में हथु वंडराइजे। कंहिंखे चवंदा सुठो कमु वज़ाहत कयो प्यारा? वाह वाह,
1: नमाज़ पढ़िजे
0: सही,
1: क़ुरान शरीफ़।
0: वाह वाह, दोस्तनि जेको नाम खणणु चाहींदो?
1: सुहाग
0: जी,
1: उस्ताद नवीद कोरी
0: जी,
1: इन्हीं
0: सभिनी अव्हांजी सॼी संगत खे मुंहिंजा बि सलाम हुजनि। का फरमाइश हुजे त ॿुधाए छॾियो, प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं शामिल करण जी, छाकाणि त हींअर वक़्तु थी
1: रहियो आहे।
0: जी
1: बालक सिंधी,
0: बालक सिंधी जो को बि गीत? मुंहिंजा सुहिणा सनम रखई मौला भरम। वॾी महिरबानी प्यारा, प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, इनशाला अव्हांजी इहा फरमाइश लाज़मी पूरी कंदासीं। Thank you. वक़्तु थियो आहे न्यूज़ जो, उन खां बाद में हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक, वरी मिलंदासीं। प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क ते।

घटो भरसा खौफनाक हादसों ट्रैक्टर ट्राली बिजली की तारन से टकराए जन के नतीजे में तीन औरतों समेत छह जना फोत उणवीह जना जख्मी थी पिया पीजो गोट भरसा पलाल से भरल ट्रैक्टर ट्राली बिजली के तारन से टकराए जन सबब करंट लगन के नतीजे में फरीदा हनीफ सिकंदर अलारिनो समेत छह जना फोत थी पिया फोतियन जा लाश ए जख्मी मकली अस्पताल मुंतकिल। यमनी हुसैन जा सऊदी शहर ते हमला 73 का वधिक शहरी जख्मी हुसैन सऊदी शहर अभा उमेस मुशेत नजरान ए जाजान ते हमला किया हमलन के नतीजे में औरतन समेत 73 का वधिक शहरी जख्मी थे। सऊदी इतिहादी फोर्स मुजिब हुसैन के सऊदी अरब के शहरियन मथा हमले जो सख्त जवाब दिनों वो वजी आजम शहबाज शरीफ पारा सऊदी अरब के हौसी बागियन के हमलन की मुजम्मत सऊदी अरब से गड रहन वाले अजम जो भी वर्जाओ शहबाज शरीफ तो सऊदी शहरन ते हमला मुजम्मत जोगा हमलन में जख्मी थियल शहरियन की जल्द सेहतियाबी लाए दुआगू आया पाकिस्तान सऊदी सलामती खुद मुख्तारी के दिफा लाए गड बीठल है।

ईरान जंग नथो चाहे पर मज़ामत तां पोइ ते बि न हटंदो। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त तेहरान सदाई जंग जो मुखालिफ़ रहियो आहे ऐं कॾहिं बि जारे नाहे रहियो। ईरान जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ाउ करे रहियो आहे, पंहिंजे मफ़ादनि जो दिफ़ाउ जारी रखियो वेंदो।

असेंबली में एमकेएम जो गलन जी इजाजत न मिलने एहतजाज स्पीकर टाई साडो नारेबाजी एमकेएम के एहतजाज दौरान सिंध असेंबली वफाकी हुकूमत का पेट्रोल तां लेवी खत्म करण वारो ठहराव मंजूर करे वरतो। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह की सदारत हेठ शुरू थियो। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद असेंबली मेंबर्स पारा ऐवान वारियूं वीडियोस सोशल मीडिया ते रखण वारो मामलो थारियो। स्पीकर चयो त मेंबर जा नाला ॾियो। एमकेएम मेंबर्स मामले ते एहतजाज शुरू कयो। जालन जा चयो त सिंध हुकूमत लेवी खत्म नथी करे सघे, वफाक खां लेवी खत्म करण जो मुतालबो करे सघे थी। स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾियो। हिकु साल दौरान को बि नओं टैक्स नाहे लॻायो वियो। बरामदात ते ॿधल माशी तरक़ी हुकूमत जी तर्जी आहे। बजट खां पहिरियां बि सनअतकारनि सां मुशावरत थी। ॾुखियनि हालतुनि बावजूदि बुनियादी सुधारा कया विया। वज़ीर-ए-आज़म जूं सनअतकारनि ऐं कारोबारी शख़्सियतुनि जे वफ़द सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। शहबाज शरीफ चयो त इन्फोर्समेंट ज़रिए हिकु साल में 800 अरब रूपिया रिकवर कया विया। वापारी बिरादरीअ जे वफ़द वज़ीर-ए-आज़म जो थोरो मञीदे चयो त मुशावरत जो अमल आईंदा बि जारी रहणु घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।